0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाला और मेरे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं शाहिद जी, और हम दोनों आपके लिए लेकर आने वाले हैं द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स हैपनिंग इन आईची नगोया जापान। और सबसे बड़ी खबर दोस्तों जो आज दिन की आ रही है वो है सॉफ्ट टेनिस की दुनिया से, क्योंकि जय मीना ने भारत को पहली बार सॉफ्ट टेनिस में एक मेडल अश्योर करवा दिया है एशियन गेम्स में। जी हाँ, यू हर्ड मी राइट, इंडिया स्टैंड्स टू बी अश्योर्ड ऑफ अ मेडल फिनिश एंड ऑल्सो ऑफ अ मेडल इन द वर्ल्ड ऑफ सॉफ्ट टेनिस in Asian Games. A sensational comeback from Jay Meena to deny Sherwin Nugent the semi-final spot. और हमने ये देखा कि पहले वो 3-3 के साथ गेम में, फाइनल गेम में अटल एक साथ टाइड अप थे, लेकिन Jay Meena was trailing 3-5 in the final game before clawing back to win the next 4 points and eventually taking the quarter final 4-3. आपको बता दूं फाइनल स्कोर लाइन रही 0-4, 4-2, 2-4, 4-2, 5-3, 2-4, 7-5, and obviously India's Jay Meena came out successful at the end of that game to move ahead for assuring India for the first medal in soft tennis. Jay Meena ka jo ab mukabla hai, which is in the second men's single semi-final, wo hoga aaj dopahar 12 baje. शाहिद
2: जी बिल्कुल, शूटिंग से बढ़िया खबर आ रही है। हालांकि अभी तक जो उम्मीद की जा रही वैसा प्रदर्शन नहीं है, लेकिन शूटिंग के स्कीट वर्ग से, महिला वर्ग से एक अच्छी खबर है। भारतीय जो तिकड़ी है, परिणाल धानीवाल, महेश्वरी चौहान, इसके अलावा रायजा ढिल्लोन की जो महिला टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया, परिणाल धानीवाल और रायजा ढिल्लोन ने 125 में से 111 अंक जुटाए, जबकि महेश्वरी चौहान ने 109 अंक हासिल किए, कुल 331 अंक जुटाए और भारत ने पर कांस्य पदक जीत लिया। इस वर्ग में चीन ने 357 अंकों के साथ गोल्ड, जबकि कजाकिस्तान ने 336 अंकों के साथ सिल्वर मेडल जीता। यानी काफी ज्यादा फासला रहा गोल्ड और कांस्य पदक का, जो देखा जाए अंक देखा जाए तो। उधर महिला वर्ग के स्कीट स्पर्धा में भारतीय महिला निशानबाज राजा ढिल्लोन और परिणाज धालीवाल दोनों फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। उम्मीद है यहां से भी अच्छी खबर आएगी। चलते चलते एक और शूटिंग की खबर देते, हालांकि मनु भाकर भी फाइनल मुकाबला खेल रही है, लेकिन उससे पहले बताएं दिन की जो शुरुआत हुई थी बेहद निराशाजनक रही थी साक्षी। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में जो मुकाबला था वहां मनु भाकर ने 579 के स्कोर के साथ व्यक्तिगत फाइनल में पहुंच गई, हालांकि एकलौती खिलाड़ी रही। वहीं ईशा सिंह, जिनसे काफी उम्मीदें थी, सुरुचि जो बेहद जबरदस्त खिलाड़ी है, दोनों कुछ खास नहीं कर पाई, दोनों फाइनल के लिए चूक गई। बताएं ईशा सिंह ने 572 अंक जुटाए, वहीं सुरुचि 568 अंक ही जुटा पाई। हालांकि अभी मनु भाकर फाइनल मुकाबला खेल रही हैं।
1: राइट, एंड नाउ मूविंग ऑन टू सेपक तकरो, जहां पर भारत ने आज फिलीपींस को पहले मैच में 2-0 से हरा दिया। और उसके बाद अगर हम बात करें, दिस वाज फ्रॉम द टीम रेगू प्रिलिमिनरी ग्रुप बी क्लैश, इसके बाद भारत ने फिलीपींस को दूसरे मैच में भी 2-0 से लीड बना ली। सो इट लुक्स लाइक इंडिया आर क्लोजिंग इन ऑन अ क्लीन स्वीप ओवर फिलीपींस, क्योंकि अब तीसरा और फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। वहीं अगर रोइंग की भी बात कर ले तो सतनाम सिंह और सलमान खान ऑफ इंडिया दोनों, दे फिनिश सेकंड इन द मेंस डबल्स कल्स हीट्स विद 6 मिनट्स 15.63 टाइमिंग को क्लॉक करके, एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, फाइनल ए। वहीं बलराज पनवर फिनिश थर्ड इन द मेंस सिंगल्स कल्स एंड हैज एडवांस्ड टू फाइनल ए। महिलाओं की अगर रोइंग में बात करते हैं तो इंडिया फिनिश थर्ड इन द रोइंग वुमेन्स 4 हीट्स एंड दे विल नाउ टेक पार्ट इन द फाइनल ए। शाहिद
2: जी बिल्कुल, टेबल टेनिस से खबर आ रही, मिश्रित युगल के दूसरे दौर में भारत के हरमीत देसाई और यशस्विनी घोरपड़े ने मालदीव के मोहम्मद इस्माइल और फातमित अली के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला है। वहीं मानुष शाह और दिया चितले ने श्रीलंका के चानुल कुलपाडू और भिवांडी को 3-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है।
1: राइट, कनू स्पिरिट में थोड़ी सी अच्छी खबर आपको मैं देने वाली हूँ, क्योंकि भारत के जो मेंस कयाक हैं फॉर 500 टीम फिनिश थर्ड इन द हीट्स एंड क्वालिफाई फॉर द फाइनल ए। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कनू स्प्रिंट में जो है वो है ओनम अरुण सिंह, हर्षवर्धन सिंह, शक्तवत वरिंदर सिंह और नावचा सिंह लाए तो जाम कंबाइंड फॉर अ टाइमिंग ऑफ 1 hour 29.447 seconds इन द हीट्स। मेघा प्रदीप फिनिश फिफ्थ इन द वुमेन्स कनू सिंगल 200 meters हीट्स विद द टाइमिंग ऑफ 46.675 and qualified for the semi-final. These are all the updates that we have been bringing to you. And a very quick, aapko ye bhi bata de ki medal tally mein is samay Bharat kahan par फिलहाल स्टैंड कर रहा है दोस्तों. वेल नॉट अ लॉट ऑफ गुड न्यूज ऑन दैट फ्रंट, क्योंकि अभी भारत को आज भी मेडल का इंतजार है. तो स्टैंडिंग तो वही है भारत की, यानी आठवें स्थान पर, जिसमें एक गोल्ड जो कल हमारी विमेंस क्रिकेट टीम लेकर आई थी. और उसके साथ साथ हम बात करते हैं तो उसके साथ साथ हम बात करें तो दो ब्रॉन्ज भी हमारे पास है, एंड ऑफ कोर्स अलोंग विद दैट तीन ब्रॉन्ज सॉरी एंड चार सिल्वर, मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 8. दैट इज ऑल द अपडेट्स दैट वी ब्रॉट टू यू इन दिस मॉर्निंग अपडेट एट 9:30 AM. फॉर द मोमेंट इट्स मी साक्षी मांडवाल एंड शाहिद आजमी सेइंग गुड बाय. स्टे ट्यून्ड, वी विल कम बैक एट 10:30.
3: गाने बाजू ओनली रेडियो सुनछो 107 FM रेनबो.
4: শুনছেন নমস্কার কলকাতা,
5: নমস্কার কলকাতা
4: 107 FM রেইনবোতে. নমস্কার কলকাতা,
5: নমস্কার কলকাতা.

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

बजकर 3 मिनट स्टूडियो की घड़ी में वक्त सुन रहे हैं आप कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप। मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ 107.9 FM रेनबो दिल से दिल तक सुन रहे हैं आप इस कार्यक्रम को और बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आज जो है काफ़ी सारे विषय हैं जिन पे हम बात करेंगे। आज है ट्रिपल बर्थडे सेलिब्रेशन, साथ ही आज का दिन है बेहद खास है। सभी बातों के बारे में बात होंगी, बताऊंगी आपको, सुनूंगी आपसे, लेकिन सबसे पहले ये गीत।

आज का दिन बेहद खास, जैसा कि आपको बताया कि आज है डबल ट्रिपल सेलिब्रेशन वाला दिन, क्योंकि आज बॉलीवुड के तीन खास सितारों का बर्थडे है। पहला नाम है प्रेम चोपड़ा जी का। जी हाँ ना दोस्तों, जिनका एक डायलॉग सुनते ही हम सब ये डायलॉग भूल ही नहीं पाए। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। दूसरा नाम जिनका आज जन्मदिन है वो है एवरग्रीन तनुजा। और तीसरा नाम है राहुल वैद्य का। सितारों के लिए नॉनस्टॉप गपशप की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और जन्मदिन की ढेर सारी जो है हैप्पी बर्थडे वाली विशेष

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

एक घोषणा, डाक अदालत, अध्यक्षन आरएमएस एसबी मंडल की अध्यक्षता में आरएमएस एसबी मंडल की डाक अदालत का आयोजन दिनांक 7/10/2026 को 12 बजे अधीक्षण आरएमएस एसबी मंडल कार्यालय 2 MG रोड हावड़ा, चौथी मंजिल हावड़ा प्रधान डाकघर भवन हावड़ा 7111101 में गूगल मीट के माध्यम से किया जाएगा। इस डाक अदालत में आरएमएस

एसबी मंडल से संबंधित आरएमएस सेवाओं की शिकायतों समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपने सहायक दस्तावेजों सहित अपने शिकायत डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल rmssbdn@gmail.com ईमेल की विशेष में एप्लीकेशन फॉर डाक अदालत अवश्य लिखें। इसके माध्यम से अधीक्षण RMSSB मंडल हावड़ा 7111001 को इस प्रकार भेज सकते हैं कि वे दिनांक 28/9/2026 तक जो है कार्यालय में प्राप्त हो जाए। शिकायतकर्ता अपना ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इच्छुक ग्राहक को शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि उपयुक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डाक अदालत में समय पर उपस्थित हो। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु सहायक अध्यक्ष मुख्यालय के दूरभाष नंबर 0332641-5949 पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस वीजी का लिंक यथासंभव साझा किया जाएगा। जरूरी नोट, कानूनी मामलों जैसे उत्तराधिकार आदि के नीतिगत मामलों में संबंधित प्रकरणों पर उपयुक्त डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा।

एक और घोषणा, 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 28/10/2026 को अपराह्न 12:30 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR Avenue कोलकाता 7000012 में गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों में पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र के संदर्भ में विभिन्न डाक प्राधिकरणों के विभिन्न डाक प्राधिकारियों के पूर्व में प्राप्त पात्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूरे ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR Avenue कोलकाता 7000012 के नाम से भेजी जाए और यह डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या फिर adpgcowb@gmail.com या फिर pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30/9/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वो उपरोक्त अधिक निर्धारित तारीख में और समय पर गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत में पेंशन अदालत की में उपस्थित रहें। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि दूरभाष में जो कि 0332212050 या फिर 0332210612 या फिर 0332210500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों में ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखना अनिवार्य है। विशेष नोट, उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि के संबंधित विधिक मामलों में एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

0: BIS IT Nagoya.
1: स्वागत है दोस्तों आप सबका इस घंटे के अपडेट के साथ। मैं हूं शाहिद आजमी, मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे शूटिंग की, क्योंकि शूटिंग से खबरें ज़्यादा हैं, शूटिंग से मेडल ज़्यादा भारत को मिल रहे हैं, क्योंकि भारत ने अब तक जो 9 मेडल जीते उसमें से 7 शूटिंग से। स्कीट में एक और अच्छी खबर आई है, भारत को दूसरा पदक मिल गया है। पुरुषों के टीम वर्ग में भवगीत सिंह गिल, अनंजीत सिंह नरुका और मिराज अहमद खान ने फाइनल में 346 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया और भारत के खाते में ब्रॉन्ज मेडल जोड़ दिया। इस वर्ग का गोल्ड मेडल कतर ने 553 अंकों के साथ जीता, जबकि सिल्वर मेडल कुवैत ने 548 अंकों के साथ अपने नाम किया। इससे पहले आज सुबह परिणाम धालीवाल, महेश्वरी चौहान और रायजान ढिल्लों ने महिलाओं की स्कीट टीम स्पर्धा में 331 अंकों के साथ कांस्य पदक हासिल किया। वहीं महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में एकलौती फाइनलिस्ट मनु भाकर 181.1 स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रही और इस वर्ग का गोल्ड मेडल दक्षिण कोरिया ने और सिल्वर मेडल चीन ने जीत लिया। एक बड़ा सेटबैक भारत को मिला है यहां पर 10 मीटर में, जहां पर कोई पदक इंडिविजुअल में भारत के खाते में नहीं आया।
2: जी, थैंक यू सो मच शाहिद। एंड द नेक्स्ट अपडेट दैट यू ब्रिंग टू इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी, वेयर देयर इज अ गुड न्यूज कमिंग इन बिकॉज़ इंडिया बीट ईरान 37-23 इन द कबड्डी वुमेन्स टीम ग्रुप ए। बोथ द टीम्स आर नाउ लॉक्ड ऑन 4 पॉइंट्स इन द ग्रुप एंड हैव इंश्योर्ड देयर सेमी फाइनल स्पॉट्स। और मेंस टीम कबड्डी की अगर हम बात करें तो यह मुकाबला इस वक्त चल रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, जहां फर्स्ट हाफ में भारत ने बांग्लादेश को कंफर्टेबली 29-9 से हरा दिया था। अब इस समय सेकेंड हाफ ऑन हो चुका है और लेटेस्ट अपडेट यह है कि सेकेंड हाफ में भारत के पास एक पॉइंट की फिलहाल बढ़त बनी हुई है, यानी 2-1, जिसमें 2 अंक भारत ने अपने पास रखे हैं, जीते हैं, कमाए हैं, और दूसरी तरफ बांग्लादेश ने अभी तक सिर्फ एक ही अंक कमाया है। द टोटल स्टैंडिंग एट 31 पॉइंट्स फॉर इंडिया एज ऑफ नाउ, व्हाइल बांग्लादेश लीडिंग, शुड आई नॉट से लीडिंग बट रादर बांग्लादेश लैगिंग बिहाइंड विद जस्ट 10 पॉइंट्स ऑन बोर्ड।
1: जी बिल्कुल, शूटिंग की जैसे मैंने पहले बात की थी, एक और खबर हमारे पास आ गई शूटिंग से। अनंजीत सिंह नरुका फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है 8वें स्थान से, हालांकि फिनिश किया क्वालिफिकेशन में, लेकिन जब क्वालिफिकेशन के बाद जब फाइनल मुकाबला आता है तो बहुत ऊपर नीचे मुकाबला पहुंचता है, लेकिन एक मेडल की उम्मीद भारत की एक और बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, भारत बनाम चीन पुरुषों का जो बैडमिंटन मुकाबला है। भारत के अगर लाइनअप की बात करें यहाँ पर तो लक्ष्य सेन शी यूची से भिड़ेंगे, बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। वहीं पर मेन डबल्स की सबकी निगाहें होगी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से, वहां पर लियांग वेई केंग और वांग चांग से भिड़ेंगे, ये भी बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा। वहीं मेन डबल्स में आयुष शेट्टी का सामना होगा ली शी फेंग से। वहीं मेन डबल्स का जो दूसरा मुकाबला होगा, हरिहरन अमक अरुण और एम आर अर्जुन भिड़ेंगे हेजीटिंग ल्यू यी से, जबकि मेन सिंगल्स का तीसरा बेहद अहम मुकाबला होगा, निगाहें होंगे किदांबी श्रीकांत पर, जो भिड़ेंगे हो यांग से।
2: राइट, एंड नाउ मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ फेंसिंग, वहां से भी आपके लिए कुछ अपडेट्स लेकर आ रहे हैं आज के दिन में कि फेंसिंग की दुनिया से मेरे पास आपके पास दोस्तों कुछ खास खबर देने के लिए अच्छी है नहीं, बिकॉज द इंडियन बोथ द इंडियंस फेस डिफीट्स इन द वुमेन्स फॉइल इवेंट। जी हाँ, मीना देवी नावरम लॉस्ट टू जापान यूका उइनो 1-5, वाइल जॉयस अस्ता स्टैनली राज लॉस्ट टू मकाउस ह्यू लाम को 0-5। वहीं अगर हम बात करते हैं कि वुमेन्स फॉइल इंडिविजुअल इवेंट के अंदर भी

0: सिंह में तो मीना देवी नारम वहां से भी शी हैज गॉन आउट ऑफ कंटेंशन इन द वुमेन्स फॉयल इंडिविजुअल इवेंट आफ्टर सफरिंग अ हेवी डिफीट टू साउथ कोरियाज पार्क जी इन द राउंड ऑफ 32. वेल ऑल्सो टू टेल यू साउथ कोरियाज पार्क जी कंप्लीटली डोमिनेटेड दिस कॉन्टेस्ट फ्रॉम द आउटसेट सिक्योरिंग अ कन्विंसिंग 15-3 विक्ट्री टू एडवांस टू द नेक्स्ट राउंड.
1: जी बिल्कुल, वेट लिफ्टिंग पे भी निगाहें होंगी. हालांकि मुकाबला अभी चल रहा है, बताना अभी बहुत जल्दी होगा कौन जीतेगा, लेकिन सभी की निगाहें भारत की धाकड़ जो वेट लिफ्टर हैं मनु भाकर पर सबकी निगाह, माफ कीजिएगा, सबकी निगाहें होंगी मीराबाई चानू पे. वो क्या कमाल करती हैं, जैसे ही नतीजा आएगा आपको अपडेट में बताएंगे. फिलहाल लेकिन जिस तरह से भारत ने अब तक 9 पदक जीते हैं, उम्मीद है कि आज जब शाम ढलेगी तब भारत के पदकों की संख्या बढ़ेगी जिनमें शूटिंग का बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है.
0: राइट, एंड अनदर क्विक अपडेट कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्विमिंग ऑल्सो फॉर ऑल आवर लिसनर्स की साजन प्रकाश मिस द स्विमिंग मेंस 100 मीटर बटरफ्लाई हीट्स. मीनवाइल इज कंपैट्रियट बेनेडिक्टन बेनिस्टन हैड फिनिश्ड फोर्थ इन द हीट्स विद 53.08 सेकंड्स टाइमिंग. वहीं अनीश सुनील और वेदांत माधवन की अगर बात करें तो वो चौथे और छठे स्थान पर उन्होंने फिनिश किया मेंस 200 मीटर फ्री स्टाइल हीट्स के अंदर. अनीश क्लॉक्ड 1:22.65 अहेड ऑफ माधवन 1:23.67 सेकंड. सो नॉट अ लॉट ऑफ गुड न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्विमिंग ऑल्सो कमिंग इन. एंड अ वेरी क्विक अपडेट कमिंग इन ऑल्सो वुड बी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग, जहां आज जैसे हमें शाहिद ने बताया अभी कुछ खास खुशखबरी नहीं है. अंक तालिका पे भारत का स्थान अभी कुल मिलाकर 9 मेडल्स के साथ बना हुआ है, जिसमें 1 गोल्ड है हमारे पास, एंड ऑफकोर्स 7 कुल मिला के जो मेडल्स हमारे पास आए हैं वो रहे हैं सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स भी. सो 9 मेडल्स, उम्मीद करते हैं शाहिद यहाँ से और बढ़त मिलेगी हमें. फिलहाल के लिए शाहिद और मुझे साक्षी को दीजिए इजाजत. हम आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 11:30 बजे एक बार फिर से.

बज के 40 मिनट स्टूडियो के घड़ी में वक्त और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप। मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ और आज का दिन बेहद खास क्योंकि 3 जन्मदिन तो है ही है, उसके साथ जो है आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि आज हम मना रहे हैं 11वां आयुर्वेदा डे। जी हाँ दोस्तों, और इस बार की थीम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आयुर्वेद और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी कि बीमारी से पहले कैसे बचा जा सकता है इस विषय पर आज हम अगर थोड़ा बात करें तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य और हमारे भविष्य दोनों के लिए बेहतर हो, दोनों से जुड़ा है। आज का दिन 23 सितंबर को देश भर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष की जो थीम है वो है आयुर्वेदा फॉर अ हेल्थियर टुमारो यानी एक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। दोस्तों आयुर्वेद की खास बात यह है कि इसमें केवल बीमारी का इलाज नहीं होता है बल्कि बीमारी से बचाव और स्वस्थ जीवन शैली पर भी जोर दिया जाता है। हमारी रोजमर्रा की आदतें, समय पर खाना, पर्याप्त नींद लेना, शरीर को सक्रिय रखना और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखना स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर डालती है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल जाते हैं। जब कोई परेशानी होती है और या फिर जब कोई परेशानी शुरू होती है तब जाकर हमें ध्यान आता है, लेकिन अगर हम शुरुआत से ही अपने खान पान और जीवन शैली को लेकर सजग हो जाएंगे तो स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम जो है कम करने में मदद मिल सकते हैं। यही सोच आयुर्वेद के उस विचार से जुड़ती है जिसमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बीमार व्यक्ति के उपचार दोनों पर ध्यान दिया जाता है। तो इस आयुर्वेद दिवस पर एक छोटा सा संकल्प क्यों ना लें, अपनी सेहत को बीमारी के बाद नहीं बल्कि बीमारी से पहले ही महत्व दें। स्वस्थ शरीर, संतुलित जीवन और जागरूक आदतें, यही तो है एक हेल्दियर टुमारो की ओर छोटी सी कदम।

0: पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है।
1: जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो खुश नहीं बोलेगा।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

और आज एक चुटकी नुस्खे में मैं आपको बताऊंगी कि दिन की शुरुआत जो है गर्म पानी से करें, क्योंकि सुबह उठते ही एक ग्लास गुनगुना गर्म पानी जो है ये आपके लिए बेहद फायदेमंद होता है। आयुर्वेद कहता है कि इससे पाचन सुधरता है और शरीर जो है डिटॉक्स होता है। चाय से भी पहले ये ट्राई करके देखें। दूसरा नुस्खा जो मैं आप तक पहुंचाऊंगी वो ये कि खाने में थोड़ी सी तुलसी, हल्दी और अदरक जरूर रखें। ये तीनों हमारी रसोई के सुपरस्टार्स हैं। रोज के खाने में इनका थोड़ा सा इस्तेमाल इम्यूनिटी बढ़ाता है और स्पेशली मौसम जब बदले

0: तब तो ये बहुत काम आता है। और तीसरी जो बहुत ज़रूरी बात है वो कि अपनी नींद पूरी करें भाई, रात को जल्दी सोएं सुबह जल्दी उठें। ये हम लोग बचपन से सुनते आए हैं और कोशिश भी करते हैं कि हम इस चीज़ को माने, लेकिन हाँ बहुत वक्त ऐसा होता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, रात को लेट सोते हैं सुबह लेट उठते हैं, लेकिन ये गलत है। रात को अगर हम जल्द सो जाते हैं तो इससे बॉडी में बहुत तरह की जो है अच्छे चेंजेस आते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है दिमाग तेज होता है, अगर नींद पूरी होती है तो तनाव कम होता है और अगले दिन के लिए जो है आप भरपूर एनर्जी के साथ, डबल एनर्जी के साथ जो है अपनी कामयाबी की ओर, अपनी जो है अगले दिन के काम की ओर आगे बढ़ सकते हैं विदाउट एनी आलस।
1: आज के दिन
0: आज का दिन बेहद खास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का दिन जो है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज भी है। आज कई सारी विषयों की वजह से आज का दिन खास है, मैंने आपको बताया था। मतलब आज का दिन जो है संवाद के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। संवाद सिर्फ शब्दों से नहीं, समझ से बनती है, एक दूसरे के प्रति जो हम सोचते हैं उनसे बनता है। तो दोस्तों आज का जो है सिंपल सा ज्ञान है, आयुर्वेदा आप अपनों को, अपने आसपास के लोगों को जो है स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए उसे अपनाएं, और जो है अगर कभी बातों से काम नहीं बनता तो बस आँखों से, अपने एहसासों से और अपनी जो है दिल की धड़कनों से सामने वाले को अपने सोच के बारे में बताएं। इसी नोट के साथ आखिरी गीत के साथ छोड़ जाऊंगी आपको, सुनते रहिए साथ रहिए 107 AIR FM रेनबो, दिल से दिल तक। मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 लाइव अपडेट्स जो हर घंटे हम आपके लिए आकाशवाणी के माध्यम से दोस्तों लेकर आ रहे हैं। मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ इस वक्त है शाहिद आसमी। और सबसे पहले बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं वेट लिफ्टिंग की दुनिया से, जहां सारी नजरें आज बनी हुई हैं मीराबाई चानू पर, क्योंकि उनसे उम्मीद करी जा रही है कि वो देश के लिए एक पदक जरूर लेकर आएंगी। आपको बता दें कि सबसे पहले जो शुरू हुआ था हमारा मीराबाई चानू का, उसमें उन्होंने जो उनका बेस्ट लिफ्ट रहा था वो था 87 किलोग्राम्स का, जी हां 27 किलो का जो उनका जो फाइनल अटेम्प्ट में गया था वो उनका बेस्ट स्नैच अटेम्प्ट था। अब इसके बाद क्लीन एंड जर्क राउंड्स भी शुरू हो रहे हैं। आपको इसके साथ साथ ये भी बता दें कि रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन री सॉन्ग गम रेजेस द बार बाय कंप्लीटिंग अ स्नैच विद अ कमांडिंग 94 किलोग्राम, व्हिच मींस दैट जो मीराबाई का बेस्ट अटेम्प्ट था 87 किलो का था, वही उनकी जो कंपैट्रियट है इन्होंने स्नैच अटेम्प्ट में 94 किलोग्राम्स का बेस्ट अटेम्प्ट दिया था क्लीन एंड जर्क के साथ। अभी वो मुकाबले अब शुरू होने जा रहे हैं और उसके साथ ही साथ मीराबाई चानू ने देश के लिए एक मेडल तो कंफर्म कर ही दिया है। अब शायद ये देखना होगा कि उस मेडल का रंग कौन सा हमारे लिए होने वाला है।
2: जी बिल्कुल, मेडल कंफर्म हो गया। लेकिन एक और मेडल की बात करेंगे, सॉफ्ट टेनिस से भारत के खाते में ऐतिहासिक पदक आया है। जय मीना ने पुरुष एकल में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने जापान के ताकू कुएसाका के हाथों 2-4 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जब वो सेमीफाइनल पहुंचे थे तभी ये कांस्य पदक पक्का हो गया था। हार के बावजूद जय मीना ने भारतीय खेल इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया, जिन्होंने सॉफ्ट टेनिस में भारत के लिए एशियन गेम्स का पहला पदक जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। और श्रोताओं एक दिलचस्प बात बता दूं, जय मीना की कहानी एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि वह शुरुआत में क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन आज वो सॉफ्ट बॉलर जो सॉफ्ट टेनिस के स्टार बन गए हैं।
1: जी ऑफकोर्स, देखिए कहाँ से कहाँ जिंदगी का सफर लेके चला जाता है। बट मूविंग ऑन टू द क्विक अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेबल टेनिस, हरमीत देसाई एंड यशस्वनी घोरपड़े बुक देयर प्लेस इन द मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल्स विद अ 3-1 विक्ट्री ओवर हांगकांग्स यू क्वान टो एंड विंग लैम। इसके साथ ही साथ हम मिक्स डबल्स पेयर में अगर बात करते हैं तो मानु शाह और दिया चटाले ने भी मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश कर लिया है विद अ डोमिनेंट स्ट्रेट गेम्स विक्ट्री ओवर द मालदीव्स पेयर ऑफ अहमद मूसा और नजीम असीहत। तो यहां पर भी अब भारत की उम्मीदें थोड़ी बढ़ती हुई, बिकॉज बोथ द मिक्स डबल पेयर्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया हैव नाउ मूव्ड ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट राउंड व्हिच इज ऑफ कोर्स द मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल्स। शाहिद
2: जी कबड्डी की बात कर लेते हैं, कहा जाता है भारत की कबड्डी सबसे मजबूत है। जी हां, पुरुष वर्ग में भारत ने बांग्लादेश को 48-25 से हरा दिया। पहले हाफ में 29-9 की भारी भरकम भारत ने लीड ले रखी थी और जो दूसरे हाफ में 19-16 तक पहुंची। हालांकि 19-16 बांग्लादेश ने यहां पर कहीं ना कहीं वापसी की कोशिश जरूर की थी, लेकिन जब मुकाबला खत्म हुआ तो भारत 48-25 से जीत चुका था। वो इससे पहले आज ही भारतीय महिलाओं ने ईरान को 37-23 से शिकस्त दी है।
1: Very well said. And now moving on to boxing, Ankush Pangal advanced to the round of 16 with a convincing 5-0 unanimous decision victory over Hamsa Vogel. The Indian boxer remained more effective in the final round as Vogel struggled to mount a challenge. Yeh haan, Ankush Pangal ko saamne wale apne opponent se koi bhi mukabla nahi mila aur unko unanimous decision 5-0 5-0 se unke haq mein ye faisla diya gaya. And now he has moved on towards the round of 16.
2: जी पानी की बात करते हैं, पानी में नाव चलने की बात करते हैं, कैनो स्प्रिंट में पार्वती गीता और फेब्रम सोनिया देवी ने महिलाओं के कैक युगल 500 मीटर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। यहां से कुछ अच्छी खबर साक्षी आ रही है।
1: हाँ जी, और उसके साथ साथ आपने मुझसे अच्छी खबर की उम्मीद रखी है शायद, लेकिन मैं इससे ज्यादा अच्छी खबर अपने श्रोताओं को नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि अगला अपडेट में एक ऐसे स्पोर्ट से देने जा रही हूँ जहाँ पे भारत फिलहाल एग्जिट कर चुका है, वो है फेंसिंग की दुनिया में। हम बात करें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टार्ट फ्रॉम गीशो निधि कुमार सेरन सीज हिम रेस टू अ 100

0: for one lead early on. Lekin jo ki opponent the Circassia, he hit back immediately to level the score. And finally, humne kya dekha ki the Kazakh then edged ahead 8-7 at the end of the first period and stayed in control, finally defeating the Indian Nidhi Kumaresan 15-11, thereby ending India's Sabre campaign. Shahid,
1: ji bilkul, kabhi kabhi jeet bhi lakshya ke tak pahuncha nahi sakti, jeet haar mein badal jati hai. Aisa hi kuch dekhne ko mila sepak takra mein. Bharat ne Philippines ko 2-1 se haraya, lekin क्वालीफाई करने से चूक गई. पुरुष टीम रेगु के ग्रुप बी मुकाबले में भारतीय टीम ने फिलीपींस को 2-1 से मात दी. हालांकि इस जीत के बावजूद भारतीय टीम अगले दौर के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई, क्योंकि यहां पर जो लक्ष्य था वो हासिल नहीं हुआ.
0: राइट, एंड एज वी कम टू एन एंड ऑफ दिस अपडेट, क्विकली टेलिंग ऑल आवर लिसनर्स ऑफ द प्रेजेंट मेडल टेबल स्टैंडिंग की भारत कहां पर है इस समय. भारत 9वें स्थान पर है. कुल भारत के पास अभी 10 मेडल्स हैं, एक गोल्ड, जो क्रिकेट की दुनिया से आया भारतीय क्रिकेट महिला टीम ने हमें दिलवाया कल. 4 सिल्वर शूटिंग से आए हैं, 5 ब्रॉन्ज मेडल्स, जिसमें से 4 शूटिंग में है, 1 एमएमए में है, एमएमए में है, और 1 सॉफ्ट टेनिस में. सो इसके साथ ही फिलहाल आपसे मैं साक्षी और शाहिद लेते हैं इजाजत. दोस्तों, आपके साथ नेक्स्ट अपडेट के साथ जुड़ेंगे दोपहर 12:30 बजे. थैंक यू.
2: गाने बाजू मोनेर रेडियो सुनछो 107 एफएम रेनबो. সাত সুরে সারা দিন, সাত সুরে সারা দিন. কালজয়ী বাংলা গানের ধারা ছুঁয়ে যাক মন. শুনছেন গানদরিয়া 107 এফএম রেইনবোতে. গানদরিয়া, গানদরিয়া, ছুঁয়ে যাক মন, ছুঁয়ে যাক মন.

0: সেই ছোঁয়ার জন্য একটা আড়াল চাই, মানে সামনে সবার সামনে হাত ছোঁয়ার মতনও যে সাহস বা যে প্রয়োজনীয় সাহস সেটা কিন্তু ছিল না। যাই হোক,
1: এখন এই আড়ালটুকুই আমরা নিয়ে নিই।
2: এশিয়ান গেমস 2026 আইচি নাগোয়া।
3: Hello and a very warm welcome to all the listeners of Akashvani. Main hu Sakshi Mandwal aur mere sath dosto is waqt maujood hain Shahid Azmi, and we bringing you the latest updates at aur ghadi mein baj gaye hain 12:30 aur aapko hum dene wale hain ki Asian Games 2026 ki pichle 1 ghante mein kya kya events mein kya kya ghatit hua hai. To sabse pehle badi khabar aapko ye dete hain weightlifting ki duniya mein, jahan Meerabai Chanu ne kamaal kar diya. Ji haan, she has brought India the coveted silver. Ummeed to unse gold ki rakhi gayi thi, लेकिन सिल्वर पदक यानी सिल्वर मेडल भारत के लिए वो लेकर आ गई इस वक्त. शी वॉज एबल टू पुट इट ऑन अ टोटल ऑफ 198 केजीज, विच वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हर बेस्ट लिफ्ट फ्रॉम स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क. 198 किलो उठाने के बाद उनको आज यहां पर हमने देखा सिल्वर मेडल से नवाजा गया. आपको ये भी बता दें कि वेट लिफ्टिंग मेडल भारत के नाम 28 साल बाद आया, इसलिए एक हिस्टोरिक मेडल है. और उसके साथ ही साथ मीराबाई चानू के लिए ये उनका पहला मेडल है किसी भी रूप में एशियन गेम्स के अंदर. शाहिद
4: जी बिल्कुल, इसी मेडल से उनकी झोली खाली थी. मेरा भाई चानू कर्णम मलेश्वरी के बाद दूसरी भारतीय वेटलिफ्टर बन गई जिन्होंने ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, सभी इन तमाम बड़ी प्रतियोगिताओं में पदक जीता है. आज वेटलिफ्टिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है. जी हाँ, चीन की सॉन्ग गुम ने क्लीन एंड जर्क में 121 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 215 किलोग्राम के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है.
3: राइट, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू कबड्डी, जहां पर हमने देखा कि भारतीय महिलाओं ने ईरान को 37-23 से हरा दिया कबड्डी वुमेन्स टीम ग्रुप ए में. और इसके बाद उन्होंने अपनी जगह, मतलब दोनों ही टीमों ने, क्योंकि ये 4-4 अंकों पर इस ग्रुप में आके एक साथ टाइड हो गए, तो दोनों ही टीमों ने अपनी जगह सेमीफाइनल बना ली है. वहीं मेन्स कबड्डी की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से भारतीय मेंस कबड्डी टीम ने बांग्लादेश के ऊपर पूरी तरीके से दबदबा जारी रखा और 48-25 से बांग्लादेश को भी हरा दिया. अब नेक्स्ट भारतीय मेंस कबड्डी टीम इज गोइंग टू बी अप अगेंस्ट चाइनीज तेपाय इन इट्स फाइनल ग्रुप स्टेज के.
4: जी साक्षी, एक और शूटिंग से खबर दे देते हैं, जहां थोड़ा सा उम्मीद थी वो उम्मीद मध्यम पड़ गई. महिलाओं के स्कीट इवेंट में राजा ढिल्लो के बाहर होने के साथ ही भारत की पदक की उम्मीदें समाप्त हो गई. राजा चौथे स्थान पर रही थी. इस वर्ग का गोल्ड चीन की जियांग इतिंग ने जीता. वहीं रजत पदक थाईलैंड और कांस्य पदक कजाकिस्तान की शूटर ने अपने नाम किया है.
3: Right, and a quick update to be coming from the world of hockey also, where we carry on to see India's domination on Thailand. India presently leading with 13 goals, whereas Thailand has not even been able to open their account in this game in the name of goals. Bharat ki taraf se Deepika, Lal Rem Siami, Sakshi Rana, Pisal Rutuja aur Navneet Kaur, kuch aise naam rahe jinhone Bharat ko aaj goals karke is match mein diya hai. Aur jis tarah se ye match ja raha hai, ummeed yehi karenge ki Bharat ko isko bahut comfortably in a dominating manner जीत लेना चाहिए.
4: जी बिल्कुल, विश्वास की बात की तो विश्वास की बात करते हैं एशियन गेम 2026 में भारतीय स्क्वैश की. जी हाँ, अभय सिंह ने पुरुष एकल में शानदार आगाज किया. उन्होंने थाईलैंड के अरकादेत को लगातार 3 गेमों में 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली. अभय सिंह अब राउंड ऑफ 16 में कल श्रीलंका के रविंदु के खिलाफ खेलेंगे. खास बात यह भी बता दें कि एशियन गेम्स से एले 28 यानी 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक होने वाला है, उसके लिए स्क्वैश के लिए कोटा स्थान भी जुड़ा हुआ है. उधर तन्वी खन्ना ने दक्षिण कोरिया की डामी किम को सीधे गेमों में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है.
3: Right, and let's not forget the one of the best news जो आज हमें दिन की शुरुआत में मिली थी, जय मीना सेन सॉफ्ट टेनिस, who created history by winning India's first ever medal in soft tennis at the Asian Games. Yes, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करवाया. वो हार गए थे ताकुया कुरोसाका से 2-4 इन द सेमीफाइनल, लेकिन फिर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट है, क्योंकि भारत को आज से पहले कभी भी सॉफ्ट टेनिस में कोई भी मेडल नहीं मिला है. और वो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए भारत के लिए जिन्होंने सॉफ्ट टेनिस में एशियन गेम्स में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया.
4: जी बिल्कुल, इधर रोइंग की तरफ चलते हैं. लाइटवेट पुरुष डबल स्कल्स हीट में उज्जवल कुमार सिंह और रोहित चौथे स्थान पर है और फाइनल ए के लिए क्वालिफाई कर लिया है. लाइटवेट पुरुष सिंगल्स स्कल्स हीट में अजय त्यागी चौथे स्थान पर है. अब वो फाइनल में बी यानी फाइनल बी में हिस्सा लेंगे.
3: Right, and a quick update from the world of boxing also, ki Ankush Pangal has advanced to the round of 16 with a convincing 5-0 unanimous decision victory over Hamsa Bogal. Aapko bata de ki Ankush was able

0: able to completely dominate and command his opponent in this game. जी
1: जी, हाँ जी चलते आपको बता दें टेबल टेनिस से खबर है, हरमीत देसाई शशनी घोरपड़े ने मिक्स डबल्स के राउंड अप टू में मालदीव के मोहम्मद इस्माइल और फातमित अली को 3-2 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की कर ली है।
0: राइट एंड अ वेरी क्विक अपडेट बिफोर वी लीव फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट के साथ आप लोगों के साथ बता दें कि मेडल टैली में भारत की पोजीशन अभी 9वें स्थान पर है। कुल मिला के भारत के अब मेडल्स हो चुके हैं 11, जिसमें से एक गोल्ड है जो हमें क्रिकेट की दुनिया से आया, 5 सिल्वर है, 4 शूटिंग में से और 1 वेट लिफ्टिंग में जो आज मीरज भाई चानू लेकर आई, 5 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं जो इसमें से 4 शूटिंग में आए हैं, 1 मिक्स मार्शल आर्ट से आया है और तीसरा जो कहते हैं ना ब्रॉन्ज वो सॉफ्ट टेनिस की दुनिया से आया है, मेकिंग इट टोटल ऑफ राइट नाउ 5 ब्रॉन्ज मेडल्स फॉर इंडिया, सो दैट पुट्स आवर टोटल टैली एट 11 मेडल्स एंड वी आर ऑन द 9th पोजीशन। उम्मीद करते हैं कि भारत यहां से और धीमे धीमे करके ऊपर चढ़ेगा और मेडल्स आते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे यानी साक्षी मांडवाल और शाहिद को दीजिए इजाजत, आपसे जुड़ेंगे दोस्तों 1 घंटे बाद एक बार फिर से आकाशवाणी के माध्यम से ब्रिंगिंग यू द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स। थैंक यू।
2: ওনের রেডিও শুনছ 107 FM রেইনবো, সাত সুরে সারাদিন, সাত সুরে সারাদিন। কালজয়ী বাংলা গানের ধারা ছুঁয়ে যাক মন, শুনছেন গান দরিয়া 107 FM রেইনবোতে। গান দরিয়া, গান দরিয়া, ছুঁয়ে যাক মন, ছুঁয়ে যাক মন।

0: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल। मेरे साथ इस वक्त हैं शाहिद आजमी जी। एंड द बिग न्यूज दैट वी ब्रिंगिंग फॉर ऑल आवर लिसनर्स राइट नाउ इज दैट भारत ने चाइना को मेंस टीम सेमीफाइनल्स के दूसरे मैच में जी हाँ हरा दिया है। सात्विक साई रेड्डी एंड चिराग शेट्टी मेड अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट अगेंस्ट चाइनाज लियांग वेकिंग एंड वैंग चैंग, डिफीटिंग देम इन स्ट्रेट सेट्स 2-0। वेल, आपको यह भी बता दें कि इसी मेंस टीम सेमीफाइनल्स का जो पहला मुकाबला हुआ था उसमें लक्ष्य सेन का सामना हुआ था शी यू कुई से, जहां पर लक्ष्य सेन उनसे सीधे से सेट्स में यानी 21-16, 21-18 हार गए थे। लेकिन उसके बाद हमारे भारत के सात्विक साई रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जो कमबैक किया है, इट हैज हेल्प्ड इंडिया टाई द स्कोर्स फॉर नाउ, और शुड आई से लेवल द स्कोर्स विद चाइना फॉर नाउ 1-1।
2: बिल्कुल साक्षी, मुकाबला रोमांच की प्रकाशता तक पहुंच गया। बैडमिंटन है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन शानदार वापसी की है। जैसा आपने बताया, स्क्वैश की बात कर लेते हैं। स्क्वैश में भारत की शानदार शुरुआत देखने को मिली है। स्क्वैश के सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। वीर चौटरानी ने पुरुष सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में श्रीलंका के वकील को 3-0 से हराया। उन्होंने मुकाबला 11-8, 11-3, 11-3 से अपने नाम किया। वहीं तन्वी खन्ना ने भी महिला सिंगल्स राउंड ऑफ 32 में दक्षिण कोरिया की किम दामी को सीधे गेमों में 3-0 से मात दी। स्कोर रहा 11-5, 11-7, 11-5। वहीं अभय सिंह ने पहले ही शुरुआती मुकाबला जीतकर अगले दौर में जगह पक्की कर ली है।
1: Right, and the other big news that we come to you with is from the world of hockey, जहां भारत ने थाईलैंड को एक बहुत ही dominating और commanding तरीके से 20-1 से हरा दिया in the women's pool B clash at the Gifu Prefectural Green Stadium। भारत की तरफ से दीपिका लीड स्कोरर रही और उसके बाद ऋतुराज पिसल और नवनीत कौर ने भी 3-3 गोल भारत के नाम दागे। अगर हम बात करते हैं थाईलैंड की, तो थाईलैंड की तरफ से जो इकलौता गोल उनके खाते में आ जाया, वो आया सुपानसा समानसो की तरफ से, who was able to convert a penalty corner। Well, for all our listeners, आपको ये भी बता दें कि अब इसके बाद भारत का मुकाबला होगा रविवार को सिंगापुर से, where they will be playing their final pool B match basically against Singapore on Sunday शायद।
2: साक्षी, एक और उम्मीद की बात करता हूँ। उम्मीद बनी, टूट गई। एशियन गेम 2026 के पुरुष स्ट्रीट फाइनल में रणजीत सिंह नरूका ने 25 का स्कोर किया और चौथे स्थान पर है। मामूली अंतर से वो पदक की जो दौड़ थी वहां से, यानी पोडियम फिनिश करने से चूक गए। इस वर्ग का गोल्ड मेडल कतर ने जीता, जबकि सिल्वर चीन और ब्रॉन्ज मेडल चीनी ताइपे के नाम रहा। वहीं अरंजीत सिंह, जिन्होंने पिछले एशियन गेम्स में रजत पदक जीता था,

0: बार पदक से जरूर चूक गए, हालांकि उनके पास वापसी का शानदार मौका भी बचा हुआ। आनंदजीत सिंह नरूका कल मिश्रित टीम स्पर्धा में एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे।
1: राइट, एंड अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट हैज ट्रांसपायर्ड इन द डे ऑन दिस टुडे, कहना चाहिए एशियन गेम्स 2026 में, तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग के अंदर हमारे लिए लेकर आई आज सिल्वर मेडल बाय लिफ्टिंग अ टोटल ऑफ 198 kgs, व्हिच वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हर बेस्ट लिफ्ट इन स्नैच एंड देन क्लीन एंड जर्क कैटेगरी। उसके साथ ही साथ एक और बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर जो हमने आपको दी है वो है सॉफ्ट टेनिस की दुनिया से, जहां जय मीना क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन सॉफ्ट टेनिस एट द एशियन गेम्स। ही वन द ब्रॉन्ज मेडल बाय लूजिंग ऑफ कोर्स टू टाकुया खारुसा कटूपोर इन द सेमीफाइनल, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी जीत थी शाहिद, टू गेट द फर्स्ट मेडल एवर फॉर इंडिया इन एशियन गेम्स इन सॉफ्ट टेनिस।
0: बिल्कुल बड़ी खबर थी। रोइंग में भी भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है, जहां पर पुरुषों के क्वार्टरबल स्कल्स में अरविंद कुलदीपिंदर नवदीप और जकार की चौकड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने हीट्स में 6:18.62 का समय निकालते हुए फाइनल में जगह बनाई।
1: राइट, अब आपको खबर देते हैं कबड्डी की दुनिया से, जहां पर इंडियन मेंस कबड्डी टीम ने आज बांग्लादेश को 48-25 से हरा कर अपने लिए और अपने स्थान को और ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है, बिकॉज अब भारत का अगला मुकाबला होने वाला है चाइनीज तैपेई के खिलाफ इन इट्स फाइनल ग्रुप स्टेज गेम, जो कि होगा कल। लेकिन सबसे खूबसूरत और अच्छी बात यह रही है कि भारतीय मेन कबड्डी टीम का ये तीसरी स्ट्रेट विक्ट्री थी इस कैंपेन में, और कल उनका होगा आखिरी मुकाबला चाइनीज तैपेई के खिलाफ। वहीं भारत की महिला कबड्डी टीम ने भी आज ईरान को 37-23 से वुमेन्स टीम ग्रुप ए के मैच में हरा दिया, क्योंकि ये दोनों ही टीम्स के अंक 4-4 पॉइंट्स पर अब एक साथ आकर लॉक हो गए हैं इस ग्रुप में, तो दे बोथ हैव इंश्योर्ड देयर सेमीफाइनल स्पॉट्स नाउ।
0: जी बिल्कुल, खबरें जारी रहेंगी इस जो अपडेट है इसमें अब इतना ही, लेकिन हाँ ये बता दें कि बैडमिंटन का रोमांच बना हुआ है अगले घंटे, हालांकि 2:30 पर हम नहीं मिलेंगे, 3:30 पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থা ফিচ চলতি অর্থবর্ষে ভারতে জিডিপি বৃদ্ধির হার 6.9% হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। এর আগে এই সংস্থা জিডিপি বৃদ্ধির হার 6.4% হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছিল। জুন মাসে তাদের বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্ভাবনা শীর্ষক প্রতিবেদনে এই সংস্থা বলেছে যে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার প্রথম ত্রৈমাসিকে যেভাবে অগ্রগতি ঘটিয়েছে তাতে ভারতের অর্থনীতির স্থিতিস্থাপকতা প্রমাণিত হয়েছে। এদিকে S&P রেটিং সংস্থাও চলতি অর্থবর্ষে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির 7% পৌঁছবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। পশ্চিম মধ্য এবং সংলগ্ন উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ওপর অবস্থানকারী অতি গভীর নিম্নচাপটি ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আজ রাতের মধ্যে অতি গভীর নিম্নচাপ হিসেবে এটি বিশাখাপত্তনম এবং গোপালপুরের মধ্য দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করার সম্ভাবনা। এর ফলে আজও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। এশিয়ান গেমসে মহিলাদের 49 কেজি ভারোত্তোলনে মীরাবাই চানু রৌপ্য পদক পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মীরাবাই চানুকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই মুহূর্তের খবর এখনকার মতো এই পর্যন্তই।
1: পরিযোজনা প্রস্তুতি সরকারি উদ্যম তরক্কি সমাজ কি পরিযোজনা প্রস্তুতি।
2: नमस्कार दोस्तों, आज परियोजना प्रस्तुति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है आपकी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। और ऐसा है कि आज जिस विषय से संबंधित ढेर सारी बातें आपसे साझा करूंगी, यानी कि जिस मिशन से संबंधित, जिस योजना से संबंधित, वो है नेशनल आयुष मिशन, यानी कि राष्ट्रीय आयुष मिशन। और इस मिशन की शुरुआत 29 सितंबर 2014 को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आयुष विभाग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। वर्तमान में इसका कार्यान्वयन आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के मुख्य उद्देश्य भी हैं, जिसमें से कि किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सबसे प्रमुख है, देश भर में सार्वभौमिक पहुंच के साथ लागत प्रभावी, अफोर्डेबल और न्याय संगत आयुष, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, बुनियादी ढांचे का विकास, आयुष अस्पतालों और औषधालयों को उन्नत बनाना तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHC, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC व जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं को सह स्थापित यानी कि को लोकेट करना, गुणवत्ता नियंत्रण बहुत ही मायने रखता है। आयुष औषधियों दवाओं का गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना और इसके लिए मानक निर्धारित करना, कच्चे माल की उपलब्धता, आयुष दवाओं के लिए औषधीय पौधों और कच्चे माल की सतत आपूर्ति व उपलब्धता सुनिश्चित करना, जी हाँ, शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना भी इसका एक उद्देश्य है। आयुष से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान प्रणालियों को मजबूत करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। और मुख्य धारा में एकाकीकरण, आयुष प्रणालियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की मुख्य धारा में जो है एकीकृत करना, जो है शामिल करना, इसका एक उद्देश्य है। तो आज आपसे कुछ बातें मैंने साझा की कि क्यों महत्वपूर्ण है नेशनल आयुष मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, और फिर किसी रोज किसी और एक योजना पे ढेर सारी बातें साझा करूंगी। और अब थोड़ी ही देर में रुक करते हैं अपने उस कार्यक्रम की ओर जिसका नाम है 3 का तड़का।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर।
2: स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 3:05, मतलब अब कह सकते हैं कि 3:06।

और ऐसा है कि आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ, वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस नून शो में जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। नाम है इसका तीन का तड़का, हैशटैग दिल धड़का, जो सुलक्षणा अपने अंदाज में कहती है। और इसके साथ ये भी कहूंगी कि तीन का तड़का मतलब ट्रिपल म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम। और क्यों ना आगाज करें हम इस खूबसूरत गीत से जिसे हमने लिया है फिल्म जय हो से। अरमान मलिक और मैरिन डिक्रूज की आवाज में इस गीत को मैं आप तक पहुंचाती हूं आपके ही अपने चैनल के जरिए जो कि कनेक्ट करता है दिल से दिल तक, यानी कि 107 FM रेनबो के जरिए।

138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत से संबंधित सूचना। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 28/10/2026 को

मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएंगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और आंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ताओं के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यूरो का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्कल, P36 CR एवेन्यू, कोलकाता 712 के नाम से भेजी जाए। और ये डाक या ईमेल आईडी भी नोट करें, adpgcob@gmail.com या pgwb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30/9/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि के दूरभाष संख्या नोट करें, 0332212050। दूसरा नंबर नोट करें, 0332212062। तीसरा नंबर 0332212500 पर जो है संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक आवेदन पेंशन अदालत शब्द लिखी होनी चाहिए। उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तर अधिकारी आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी FM रेनबो। म्यूजिकल योर्स पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका ही फेवरेट नून शो तीन का तड़का हैशटैग दिल धड़का अपनी आज फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के संग। और अगला गाना आप सभी के लिए बिल्कुल तैयार है, फ्रॉम द मूवी श्रीकांत। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। जुबेन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाज में इस गीत को सुनेंगे, जिसे बड़े खूबसूरती से कलमबद्ध किया है श्लोक लाल ने और संगीत बद्ध किया है तनिष्क बागची ने।

काफी राना, व्हाट अ रोमांटिक सॉन्ग। वाकई में फिल्म भी काफ़ी रोमांटिक थी, और आपको बता दूं कि ये गाना आपने सुना फिल्म केदारनाथ से। खूबसूरत वादियों में पूरा पिक्चराइजेशन हुआ था इस फिल्म का, और अरिजीत सिंह, निकिता गांधी की आवाज़ में इस गीत को सुना, जिसे बड़े खूबसूरती से कलमबद्ध किया अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीतबद्ध किया है अमित त्रिवेदी ने।

एक विशेष सूचना डाक अदालत संबंधित। अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल की अध्यक्षता में आरएमएस एसबी मंडल की डाक अदालत का आयोजन दिनांक 7/10/2026 को 12 बजे दोपहर 12 बजे अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल कार्यालय 2 MG रोड हावड़ा, चौथी मंजिल हावड़ा प्रधान डाकघर भवन हावड़ा 7,11,101 में गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। इस डाक अदालत में आरएमएस एसबी मंडल से संबंधित आरएमएस सेवाओं की शिकायतों समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपने सहायक दस्तावेजों सहित अपनी शिकायतों डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल आईडी नोट करें rmssbdn@gmail.com। ईमेल के विषय में एप्लीकेशन फॉर डाक अदालत अवश्य लिखें के माध्यम से अधीक्षक आरएमएसएसबी मंडल हावड़ा 7,11,101 को इस प्रकार भेज सकते हैं कि वे दिनांक 28/9/2026 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाए। शिकायतकर्ताओं अपना ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इच्छुक ग्राहकों शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपयुक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डाक अदालत में समय पर उपस्थित हों। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु सहायक अधीक्षक मुख्यालय से दूरभाष संख्या नोट करें 0332641549 पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस का लिंक यथा समय साझा कर दिया जाएगा। कानूनी मामलों जैसे उत्तराधिकारी आदि और नीतिगत मामलों से संबंधित प्रकरणों पर उपयुक्त डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। डाक अदालत संबंधी सूचना समाप्त हुई।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 3:27 और आपको बता दूं कि 3:30 से आपके लिए रहेगा एक विशेष कार्यक्रम NCERT का, तो उसे सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। और उस बीच जो इस बीच समय जो शेष बचा है उसमें आपके लिए रहेगा ओके जानू फिल्म से जुबेर नौटियाल और शाशा तिरुपति की आवाज में ये खूबसूरत गीत द हम्मा सॉन्ग। याद आया कुछ द हम्मा सॉन्ग? और इस गीतकार है महबूब, संगीतकार है AR रहमान। और इसी के साथ सुलक्षणा को आज्ञा दीजिए, लेकिन आपको बता दूं जाने से पहले कि 7:02 पर इसी चैनल पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। लेकर आऊंगी छायालोक में सेगमेंट हम साथ साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए 107 FM रेनबो के साथ।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है, आइए सुनते हैं।
2: रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए।
1: क्या बात है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते,
2: बस चलने का हौसला होना चाहिए।
1: जी, इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें सबसे पहला संदेश मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
1: और संजय

0: लखनऊ उत्तर प्रदेश से वारिस अली खान, इस्लामुल निशा शकील, अहमद शहनाज खान और दानिश।
1: कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
0: श्रोताओ, हमेशा की तरह हमारा आभार आप सबको संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं, ये भी जानिए कि अगले एपिसोड में एक बेहद रोचक आविष्कार की कहानी।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसा तो है नहीं कि अतीत में या पुराने समय में लोगों को बुखार नहीं आता था। जी हाँ, आता जरूर था, उनका शरीर भी गर्म होता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता था कि शरीर है कितना गर्म।
0: जी, तो आज हम आपको उमंग कार्यक्रम के द्वारा ले चलेंगे प्राचीन काल के एक ऐसे युग में जहाँ ना कोई ट्रेन है और ना जहाज। अजीब सा दृश्य होता होगा
1: जी।
0: चिकित्सक मरीज के माथे पर हाथ रखकर कहते होंगे, बुखार तो है, लेकिन श्रोताओं ये ऐसी बात हुई जैसे कोई दुकानदार बिना तराजू के कह दे लगता है 5 किलो होगा।
1: तो आइए चलते हैं लगभग 400 साल पीछे, सन 1592 के आसपास। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसे आज के थर्मामीटर का शुरुआती पूर्वज माना जा सकता है,
0: और इस उपकरण को थर्मोस्कोप कहा गया
1: जी।
0: आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कांच की एक नली बनाई। इस नली के ऊपरी हिस्से में हवा बंद रहती थी और नीचे का हिस्सा पानी में डूबा रहता था।
1: तो श्रोता, होता ये था कि जब कांच का बल्ब गर्म किया जाता था तो अंदर की हवा फैलती थी और तापमान के अनुसार पानी का स्तर ऊपर नीचे होता था। इस तरह इस शुरुआती यंत्र से बस इतना ही पता चलता था कि तापमान बढ़ा या घटा है, इसमें कोई निश्चित संख्या का पैमाना नहीं था।
0: अभी एक बहुत बड़ी समस्या बाकी थी। ये यंत्र बता तो देता था कि चीज गर्म हुई या ठंडी
1: जी,
0: लेकिन ये नहीं बताता था कि कितनी गर्म या कितनी ठंडी।
1: बिल्कुल।
0: फिर आया 17वीं शताब्दी का दौर। बहुत से वैज्ञानिकों ने तापमान मापने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण बनाए
1: जी,
0: लेकिन अब तक कोई एक निश्चित पैमाना नहीं था। किसी के थर्मामीटर पर एक संख्या तो दूसरे के थर्मामीटर पर दूसरी संख्या, बड़ी दुविधा थी।
1: फिर इस कहानी में प्रवेश होता है एक महान आविष्कारक का, जिसका नाम था डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। उन्होंने पाया कि पारा या मरकरी तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। हल्के ताप पर भी पारा प्रतिक्रिया देता है, यानी फैलता है या सिकुड़ता है। सन 1724 में फारेनहाइट ने अपना तापमान का पैमाना प्रकाशित किया और तापमान को संख्याओं में व्यक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: श्रोताओं, ये क्रांतिकारी खोज थी। अब डॉक्टर निश्चित रूप से कह सकते थे कि मरीज के शरीर का तापमान कितना है
1: जी,
0: और यहीं से तापमान की भाषा बदल गई। अब गर्मी और ठंडक सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं रही, वह मापने योग्य वैज्ञानिक मात्रा बन गई
1: जी।
0: इससे चिकित्सा करने के तरीकों में भी भारी असर पड़ा।
1: लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने सन 1742 में एक और सरल पैमाना प्रस्तावित किया जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। इस पैमाने में पानी के जमने और उबलने के बिंदुओं को आधार बनाया गया।
0: तो श्रोताओं, अब दुनिया के पास तापमान को मापने की एक व्यवस्थित भाषा थी
1: जी।
0: अब थर्मामीटर प्रयोगशालाओं से निकलकर अस्पतालों, घरों और मौसम विज्ञान विभाग तक पहुंच गया।
1: फिर आया डिजिटल युग, पारे वाले थर्मामीटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आए
0: जी।
1: अब कुछ ही सेकंड में तापमान स्क्रीन पर दिखाई देने लगा, और आज तो हमारे पास ऐसे डिजिटल थर्मामीटर हैं जो बिना छुए तापमान पता कर सकते हैं।
0: तो है ना श्रोताओं, बेहद रोचक। जरा कल्पना कीजिए, एक समय इंसान हाथ लगाकर अनुमान लगाता था, और आज मशीन पलक झपकते ही बता देती है
1: जी।
0: यही तो विज्ञान की खूबसूरती है
1: जी। एक छोटी सी जिज्ञासा से शुरुआत होती है
0: कि तापमान या गर्मी कितनी है,
1: और फिर सदियों की खोज, प्रयोग और सुधार के बाद मनुष्य वहाँ पहुँचता है जहाँ वो उस तापमान को एक संख्या में पढ़ सकता है।
0: तो श्रोताओ, अगली बार जब आप थर्मामीटर को हाथ में लें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक छोटी सी मशीन नहीं है, इसके पीछे गैलीलियो का प्रयोग है, फारेनहाइट का पैमाना है और सेल्सियस की वैज्ञानिक सोच है, और सदियों की मानव जिज्ञासा है। यही तो विज्ञान की सुंदर यात्रा है।
1: अनुमान से प्रमाण तक, अनुभव करने से मापने तक, और प्रश्न से आविष्कार तक
0: जी, और प्रश्न से आविष्कार तक। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो जरूर संदेश भेजिएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न। आपको पता करना है कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।

0: और यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम और शीर्षक है वी आर गोइंग टू द जू।
0: इस कार्यक्रम में गीत संगीत और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराई गई है और कई पशु पक्षियों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है। पशु पक्षियों की ध्वनि भी बच्चों को सुनाई गई है जिससे श्रवण आनंद और अधिक बढ़ जाता है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: ओह यस।
2: ऑल राइट, so tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger, a lion,
2: yes,
3: monkey, birds of different kind,
2: very nice,
3: camel, giraffe, and so on.
2: Oh wow. So here is a child like you who wants to go to a zoo. Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals,
3: the polar bear and seals,
2: enjoy their fishy meals,
3: enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.
3: The tiger gives a roar.
2: He wants to eat some more.
3: He wants to eat some more.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: So children, you all have listened to this poem just now. Hope you have enjoyed, isn't it?
4: Yes.
2: All right. So now, what will we do?
4: We will hum and we will sing along.
2: Yes, we will hum and sing along.

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम चींटी और हाथी।
1: भाषा शिक्षण के उद्देश्य से निर्मित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए और सबकी प्रतिभाओं और योग्यताओं का सम्मान करना चाहिए।

जंगल में एक चींटी रहती थी। वो रोज सुबह भोजन की तलाश में चल पड़ती थी। परिवार की सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चलती।

जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ता। कभी कभी हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता। जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान रहते। हाथी की एक बुरी आदत और भी थी। जहां कहीं भी वो चींटियों को देखता, कुचल देता। चींटी ये सब देखती और दुखी होती।

0: एक दिन चींटी ने हाथी से कहा,
1: तुम दूसरों को बहुत सताते हो, ये बात ठीक नहीं।
0: हाथी बोला,
2: चुप रहो, मैं चाहे जो करूं, तुम बहुत छोटी हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। हाँ,
1: चींटी चुप हो गई और घास में जाकर छिप गई।

हाथी इधर उधर घूम रहा था। तभी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी।

0: पर उसकी परेशानी किसी तरह भी कम न हुई। तब चींटी बोली,
1: परेशान क्यों हो रहे हो? तुम भी तो दूसरों को बहुत सताते हो।
0: हाथी बहुत दुखी हो गया। वो बोला,
2: मुझे माफ कर दो। अब मैं किसी को कभी नहीं सताऊंगा।
0: चींटी को दया आ गई। वो हाथी की सूंड से बाहर निकल आई। फिर बोली,
1: किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना

0: तो अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी और हाथी, और अब सुनते हैं एक और कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है देखो डाकिया आया।
1: ये कार्यक्रम पोस्ट ऑफिस, डाक सेवा और विशेषकर डाकिया के बारे में रोचक विवरण देता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि पुराने समय में डाक सेवा और एक डाकिये का कितना अधिक महत्व था। नई पीढ़ी के बच्चों के लिए ये जानकारी बहुत ही रोचक होगी।

0: किसी एक दिन
1: जब चंचल अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रही थी, तो उसने देखा एक आदमी साइकिल पर सवार अपनी धुन में ट्रिन ट्रिन घंटी बजाते हुए उसके घर की तरफ आ रहा है। हाँ, कौन हो सकता है ये? इतने में अचानक उसका एक दोस्त बोल पड़ा, देखो डाकिया आया। चंचल सोचने लगी, हाँ डाकिया, ये कौन? बस चंचल तो खेलना वेलना सब भूल गई, खेलना छोड़कर घर की तरफ गई। फिर क्या था, डाकिया अंकल के साथ बातूनी चंचल शुरू हो गई।
2: डाकिया अंकल,
3: आओ बेटा।
2: अरे मेरा नाम बेटा नहीं है, मेरा नाम चंचल है, चंचल। और आपको पता है मैं उस सामने वाले घर में रहती हूँ।
3: अच्छा चंचल, बेटे ये तुम्हारा पत्र है।
2: लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये चिट्ठी हमारे घर पहुँचानी है?
3: इस पे बेटे आपका नाम और पता लिखा है, पता मतलब एड्रेस लिखा है आपका, उससे पता चलता है कि ये आपका पत्र है।
2: तो सब जगह आप ही चिट्ठी पहुँचाते हो?
3: नहीं, हर शहर में हमारे कर्मचारी हैं, हम यहाँ से उनके पास डाक मोटर से ट्रेन से हम उनके पास भेजेंगे, वहाँ वो आपको जिस एड्रेस पे चिट्ठी जानी हो उस एड्रेस पे वो चिट्ठी पहुँचाएंगे। हम सब जगह अपने देश में नहीं विदेश तक भी हम चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं। बेटे हमारा ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, कहीं पे एरोप्लेन से कहीं पे ट्रेन से हम सब जगह चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं।
2: नेटवर्क क्या होता है अंकल? मुझे कुछ समझ नहीं आया।
3: नेटवर्क हमारा विभाग जिसमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं, गांव-गांव शहर शहर सब जगह हमारे कर्मचारी हैं जो कि आपकी चिट्ठी हर जगह पहुंचा देते हैं।
2: लाखों कर्मचारी,

0: कैसे काम करते हैं?
1: ये बेटा, हर जगह से डाक इकट्ठी करके और उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, वहाँ से छटाई करके जिस जगह की वो डाक हो उस जगह के बैग में उसको बंद करके जहाँ रेल से जानी हो वहाँ रेल से भेजते हैं, जहाँ जहाज से जानी हो वहाँ जहाज से, हर जगह की डाक हम वहीं उसके एड्रेस पर भिजवाते हैं।
0: तो आप पूरी दुनिया में चिट्ठी पहुंचाते हो?
1: हाँ बेटे, आप चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हो, हम हर जगह आपकी चिट्ठी पहुंचा देंगे। आपका उसमें नाम पता साफ साफ लिखा हो, शहर का नाम, पिन कोड वगैरह, अगर आप सही लिखते हैं, साफ लिखते हैं, तो आपका पत्र हर जगह पहुंच जाएगा।
0: ओह, आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी।
1: जी हाँ बेटे, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए, चाहे कैसा भी मौसम हो। आपकी चिट्ठी जिस दिन भी आपने लेटर बॉक्स में डाली उसी दिन से उस पे काम शुरू हो जाता है, चाहे धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, हमें हर मौसम में ही काम करना होता है। आपकी चिट्ठी समय पर पहुंचाना ही हमारा काम है।
0: डाकिया अंकल, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर आज से हम दोनों दोस्त हुए, ठीक है?
1: हाँ बेटे, जब अगली चिट्ठी आएगी हम फिर मिलेंगे, अच्छे दोस्त हैं हम।
0: हाँ हाँ, जरूर मिलेंगे। धन्यवाद डाकिया अंकल।
1: धन्यवाद चंचल।
2: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग कार्यक्रम। और अब थोड़ी ही देर में यानी कि 4:02 के लिए सुनेंगे बंगला में समाचार। और 4:02 पर आपके लिए रहेगा कैफे कोलकाता।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। हम लेकर आ रहे आपके लिए घड़ी में बज रहे हैं 4:30 और इस वक्त के लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ इस वक्त यहां पर है मौजूद शाहिद आजमी भी। और सबसे पहला अपडेट जो हम दोस्तों आपके लिए लेकर आएंगे वो है बैडमिंटन की दुनिया से। नॉट अ लॉट ऑफ ब्राइट चीयरफुल न्यूज फ्रॉम देयर बिकॉज इंडिया लॉस्ट टू चाइना 1-3 इन द मेंस टीम सेमीफाइनल एट द एशियन गेम्स 2026 एंड हैड टू सेटल इन फॉर द ब्रॉन्ज मेडल। सबसे पहला जिसमें हुआ वो हुआ लक्ष्य सेन और शी यू क्वी के बीच में, जिसमें द चाइनीज अपोनेंट डिफीटेड लक्ष्य सेन 21-16, 21-18 एंड फ्रॉम देयर इंडिया रियली कुड नेवर गेट दैट मोमेंटम गोइंग बिकॉज द सेकंड मैच सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इन दोनों ने अपने नाम कर लिया 2-0 से क्लीन सेट्स में टू लेवल इंडिया अप अगेंस्ट चाइना 1-1। लेकिन वंस अगेन व्हेन आयुष शेट्टी केम इनटू फेस ली शेफिंग, वहां पर ली शेफिंग हैड द बेटर ऑफ आयुष शेट्टी डिफीटिंग हिम इन स्ट्रेट सेट्स 21-19, 21-13, thereby putting China ahead of India 2-1. And finally, Arjun and Hariharan went down 21-16, 17-21, 21-9 in the fourth match at the semi-final tie. By the way, India's bronze is only its second ever Asian Games medal in the men's team badminton event. Shahid, a disappointing day for our shuttlers.
2: जी बिल्कुल, बैडमिंटन से उम्मीद अच्छी थी, लेकिन हाँ ये भी था मजबूत प्रतिद्वंदी हमारे खिलाड़ी हैं। उशु की बात कर लेते हैं, एशियन गेम्स में दो बार मेडल जीत चुकी नौरेम रोशिबीना देवी, महिला 60 किलोग्राम सांडा सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की थानिया कुसुमांतियास को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। रोशिबीना ने हांगझाऊ 2023 में सिल्वर मेडल और जबकि जकार्ता बालमबाग एशियन गेम्स 2018 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एशियन गेम्स में अपना

0: तीसरा मेडल पक्का कर चुकी रश्मि बिना अब कल होने वाले फाइनल में अपने पदक का रंग बदलना चाहेंगी क्योंकि सिल्वर और ब्रॉन्ज पहले जीत चुकी हैं।
1: राइट, ही इज विशिंग हर ऑल द वेरी बेस्ट। कैनू स्प्रिंट की भी थोड़े से अपडेट्स लेके आपके लिए आ रहे हैं। इंडिया मेंस कयाक 4500 मीटर टीम फिनिश थर्ड इन द हीट्स एंड क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ए। अरुण सिंह, हर्षवर्धन सिंह, शक्तावत, वरिंदर सिंह और नायोचा सिंह ओइनम हैव are going to be representing India in the final A category. वहीं मेघा प्रदीप finished fifth in the women's canoe single 200 meter heats with the timing of 49.675 seconds and qualified for the semi-finals. Sonia Devi and Parvati Geeta ended sixth in the women's kayak double 500 meter heats with the timing of 2 minutes 02.538 seconds. They have also qualified for the semi-finals. वहीं in the men's kayak double 500 meter heats, Chempa Dale, Satya Prakash, Prasanna Kumar and Prohit Baroy finished in the fifth spot and have qualified for the semi-finals. In women's canoe double 500 meter heats, Megha Pradeep and Neha Devi finished on the fifth spot also and qualified for the semi-finals.
0: जी, यहाँ पर शूटिंग की बात कर लेते हैं। हालांकि जो हमारी स्टार शूटर थी, चाहे मनु भाकर की बात करें, ईशा सिंह या सुरुचि, वो पदक की दौड़ से बाहर हुई, लेकिन स्कीट में बड़ी खबर आई। शूटिंग रेंज से भारत के लिए डबल जो ब्रॉन्ज मेडल की खबर आई है, उसमें स्कीट टीम इवेंट में भारतीय निशानबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और पुरुष दोनों टीम स्पर्धाओं में कांस्य पदक अपने नाम कर लिए। सबसे पहले बात महिला स्कीट टीम की करते हैं। राजा ढिल्लों, परिणाश धालीवाल और महेश्वरी चौहान की तिगड़ी ने शानदार निशानेबाजी करते हुए 331 अंक हासिल किए और भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया। और इसके बाद पुरुष स्कीट टीम ने भी कमाल कर दिया। ओलंपियन अमरजीत सिंह नरुका, महराज अहमद खान और भौतिक सिंह ने मिलकर 346 अंक हासिल किए और भारत को एक और कांस्य पदक दिला दिया।
1: जी, और टीटी की दुनिया से भी आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं कि दोनों ही मिक्स डबल पेयर्स हमारे जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सबसे पहले हरमीत देसाई और यशस्वनी घोरपड़े, उन्होंने हरा दिया 3-1 से हांगकांग के यू क्वान तो और विंग लैम्प को, एंड देयर बाय दे हैव बुक्ड अ प्लेस एंड मूव्ड ऑन टू द लास्ट एट। वहीं मनु शाह एंड दिया चिटाले ने भी इन द मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल्स में मालदीव के अहमद मूसा और नजीम एशद को हरा कर लास्ट एट में अपनी जगह बना ली टेबल टेनिस में।
0: यहाँ मीराबाई चानू ने जो अपनी पदकों की झोली है, जहां पर एशियाड का कोई मेडल नहीं था, उसको भी उन्होंने भर दिया है। जी हाँ, मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में कुल 98 किलोग्राम, जिसमें 87 किलोग्राम स्नैच और 111 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क का वजन था, उसे उठाकर सिल्वर मेडल जीत लिया और एशियन गेम्स में जो मेडल का सूखा था वो खत्म कर दिया।
1: राइट, और हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे आज मेडल टैली की और किस तरह से भारत का भी दिन रहा है, तो ओवरऑल आपको ये बता दे बिफोर कमिंग टू द मेडल टैली कि सॉफ्ट टेनिस के अंदर भी आज के दिन की शुरुआत एक बहुत अच्छे नोट पर हुई और शायद एशियन गेम्स 2026 की सबसे अच्छी खबर, वन ऑफ द टॉप 10 खबर ये रहेगी कि जय मीना क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन सॉफ्ट टेनिस इन द एशियन गेम्स। ही वन द ब्रॉन्ज मेडल, ऑफकोर्स लूजिंग आउट टू तकुया कुरोसाका 2-4 इन द सेमीफाइनल, लेकिन अपने आप में पहला मेडल भारत को मिला शाहिद इन सॉफ्ट टेनिस एवर इन द एशियन गेम्स, अ वेरी बिग अचीवमेंट बाय द इंडियंस आउट देयर।
0: जी बिल्कुल, बिग अचीवमेंट है, अभी अचीवमेंट और भी आना बाकी है जैसे जैसे एशियन गेम्स बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त की अपडेट तक, यानी आज की इस अपडेट के लिए आज तक, अब यहीं पर मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को अनुमति दीजिए। अब से ठीक एक घंटे बाद 5:30 पर आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।
2: सुन छो 107 FM रेनबो, शात सुरे शारा।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट के साथ हाजिर हुए मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ साक्षी मांडवाल हैं। स्वागत है दोस्तों आप सबका। बात सबसे पहले आज करेंगे हॉकी की, जहां भारतीय महिला टीम जीत के रथ पर सवार है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड को 20-1 से करारी शिकस्त दे दी। पूल बी के मुकाबले में भारत की लगातार तीसरी जीत है। मुकाबले की बात करें तो सबसे बड़ी स्टार दीपिका सहरावत रही, जिन्होंने पेनाल्टी कॉर्नर पर शानदार ड्रैग फ्लिक के जरिए अकेले 9 गोल दागे और एक बड़े जिस तरह से भारत की जो बड़ी जीत थी उसमें एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। सर्वाधिक किसी एक मुकाबले में गोल करने का जो एक रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर लिया है।
2: जी, एंड द नेक्स्ट अपडेट वी ब्रिंग टू यू इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेबल टेनिस, वेयर बोथ द इंडियन मिक्स डबल्स पेयर्स वन देयर रिस्पेक्टेड राउंड्स एंड ऑल्सो एडवांस टू द लास्ट 8। सबसे पहले बात करते हैं हरमीत देसाई और यशस्वनी घोरपड़े की, जिन्होंने मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल्स में 3-1 से जीत हासिल करी हांगकॉन्ग के यू क्वान तो और विंग लैम के ऊपर एंड देयर बाय द एडवांस टू द लास्ट 8। उसके बाद मनु शाह एंड दिया चितले स्टॉर्म्ड इनटू द मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल्स विद द डोमिनेंट स्ट्रेट गेम्स विक्ट्री ओवर द मालदीव्स अहमद मूसा एंड नजीम एशहक। इसके साथ ही दिस वाज अ वेरी कमांडिंग परफॉर्मेंस फॉर देम टू नाउ मूव ऑन इनटू द लास्ट 8 वेयर दे विल बी फेसिंग लिन शिडोंग एंड क्वाई मैन ऑफ चाइना व्हिच इज गोइंग टू बी फेस्ड बाय हरमीत एंड यशस्विनी व्हाइल दिया एंड मनीष विल बी फेसिंग वोंग चुंग एंड डुहाई ऑफ चाइनीज टेपाई।
1: श्रोताओं, शूटिंग के बारे में बता देता हूं, हालांकि आज के दिन की शुरुआत भारत के लिए कोई बहुत खास नहीं रही, निराशाजनक रही। परिनाज धारीवाल, महेश्वरी चौहान और रायजान ढिल्लो ने महिला स्की टीम स्पर्धा में उसके बाद शानदार प्रदर्शन किया और पदक जीता। लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, वहां मनु भाकर 579 अंकों के साथ व्यक्तिगत फाइनल में पहुंचने वाली एकलौती भारतीय रही, लेकिन वो भी फाइनल में पोडियम फिनिश नहीं कर पाई। मनु भाकर विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में मेडल जीतने से चूक गई और 181.1 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर ही भारतीय तिकड़ी परिनाज धालीवाल, महेश्वरी चौहान और रायजा ढिल्लो ने महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में कांस्य पदक भारत की झोली में डाला। वहीं अगर बात करें परिनाज की तो और रायजा ढिल्लो की, जो 125 में से 111 अंक जुटाए, जबकि महेश्वरी चौहान ने 109 अंक अपने नाम किए। कुल भारत ने 331 अंक जुटाते हुए कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा बात करें ओलंपियन अनंत जीत सिंह नरुका, महराज अहमद खान और भोगेश सिंह ने मिलकर कुल 346 अंक हासिल किया और पुरुषों का स्कीट का जो टीम इवेंट का कांस्य पदक भारत की झोली में डाला।
2: जी, एंड नाउ वील मूव ऑन टू कनू स्प्रिंट, वे इंडियाज मेन कयाक्स 4-500 मीटर टीम फिनिश थर्ड इन द हीट्स एंड क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ए। मेघा प्रदीप फिनिश्ड फिफ्थ इन द विमेंस कनू सिंगल 200 मीटर्स हीट विद द टाइमिंग ऑफ 49.675 सेकेंड्स एंड क्वालिफाइड फॉर द सेमी फाइनल। सोनिया देवी एंड पार्वती गीता एंडेड सिक्स्थ इन द विमेंस कयाक डबल 500 मीटर्स हीट्स विद 2 मिनट्स 2.538 सेकेंड्स। दे हैव ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर द सेमी फाइनल्स। इन मेन्स कयाक डबल 500 मीटर हीट्स चैंपा दिल, सत्य प्रकाश, प्रसन्ना कुमार एंड प्रोहित बरोय फिनिश्ड ऑन द फिफ्थ स्पॉट विद द टाइमिंग ऑफ 1 मिनट 41.141 सेकंड्स एंड क्वालिफाइड फॉर द सेमीज। इन वुमेन्स कनू डबल 500 मीटर हीट्स मेघा प्रदीप एंड नेहा देवी फिनिश्ड ऑन द फिफ्थ स्पॉट एंड आल्सो क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स।
1: स्क्वैश की बात कर लेते हैं, भारत की शानदार यहां पर शुरुआत हुई है। स्क्वैश सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ जो अपना अभियान शुरू किया, वीर चोटरानी ने पुरुष सिंगल्स में राउंड ऑफ 32 मुकाबले में श्रीलंका के वकील को 3-0 से हराया। उन्होंने मुकाबला 11-8, 11-3, 11-3 से अपने नाम किया, जबकि तन्वी खन्ना ने महिला सिंगल्स में राउंड ऑफ 32 का जो मुकाबला था वहां दक्षिण कोरिया की किम दामी को सीधे गेमों में 3-0 से मात दी। स्कोर रहा 11-5, 11-7, 11-5। वहीं अभय सिंह ने भी अपने शुरुआती मुकाबलों में जीत कर जो जीत उनकी रही उसके बाद अगले दौर में जगह बना ली है।
2: Right, and now bringing in the big news from the world of Wushu, where all the fans of Roshibina Devi will be expecting to see her performance tomorrow, which is of course going to be in the 60 kg final category. Ji haan, Roshibina Sapna Devi secured her place in the women's 60 kilogram final after beating Indonesia's Thania Kusumanangityas 2-0 in the semi-final. The Indian Wushu star will now compete for the gold medal in tomorrow's final, which is on the 23rd September. और इसके साथ ही आपको ये भी बता दे कि वुशु में अब भारत को एक मेडल भी अश्योर हो चुका है. वो कौन सा होने वाला है, शायद सिल्वर या फिर गोल्ड, ये तो हम सबको कल ही पता चलेगा.
1: जी बिल्कुल, कल पता चलेगा. लेकिन आज जिस तरह से मीराबाई चानू ने तहलका मचा, वो सबने देखा. हालांकि गोल्ड की उम्मीद थी लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंची. सिल्वर मेडल जीता जरूर लेकिन एक अपसेट भी देखने को मिला, एक निराशा देखने को मिला. ज्ञानेश्वरी देवी 8वें स्थान पर रही, 195 किलोग्राम का वजन उठाया. महिलाओं की जो 53 किलोग्राम भार वर्ग की प्रतियोगिता थी उसमें 8वां स्थान उन्हें हासिल हुआ. उत्तर कोरिया की होंग योंग कॉन्ग ने 223 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता. इसके बाद चीन की जिंगलांग झाओ का नंबर आता है, उन्होंने कांस्य पदक अपनी झोली में डाला.
2: Right, and do we have some updates to give from weightlifting? Because अभी तो आप मीराबाई चानू की बात कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम थोड़े और अपडेट्स भी देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं. Well, but I will at the end of the day tell all our viewers की weightlifting में सबसे बड़ी खबर तो मीराबाई चानू की थी, लेकिन एक और अपडेट आ सकता है, वो है ज्ञानेश्वरी यादव के लिए भी. जी हाँ, लेकिन वहां से कोई खुशखबरी नहीं आने वाली है, क्योंकि ज्ञानेश्वरी यादव फेल टू लिफ्ट 105 kilograms in a first attempt in the clean and jerk round and later went on to successfully lift in her second attempt in the women's 53 kilogram category. So overall it was not a good day because she went out of the race for a top 3 finish. But iske sath hi quickly leaving our viewers with Bharat ki is samay ank talika pe standing kya hai. 13th position pe hai India with a total of 12 medals, which has one gold and of course we have 4 from shooting, which is in silver, one weightlifting, and then we have a total, okay, wrapping it up with 12 medals, which includes the one gold, hoping that India climbs up the position chart once again back up.
1: जी बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे इसी तरह भारत का जो कारवां बढ़ता रहेगा. फिलहाल अब आपसे मुलाकात हमारी होगी ठीक 6:30 तक, 30 मिनट पर. उससे पहले मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को अनुमति दीजिए. नमस्कार.
0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.
3: শুনছো ক্যাফে কলকাতা, ক্যাফে কলকাতা 107 FM রেইনবোতে, ক্যাফে কলকাতা.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: स्वागत है दोस्तों, आप सबका घड़ी की सुई में ठीक 6:30 हो गए हैं। एशियन गेम्स पर अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बात करते हैं मुक्केबाजी की। मुकाबला एक ही था लेकिन भारत को वहां जीत मिली। जी हां, भारत के अंकुश पंघाल आज मुक्केबाजी स्पर्धा में सर्वसम्मति से हुए फैसले में जीत के साथ पुरुषों के 80 किलोग्राम का जो मुकाबला था फाइनल में, जो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहली बार एशियाई खेलों में उतरे 21 वर्ष के राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक विजेता पंघाल ने बहरीन के हमसा वेंगेल को अंतिम जिस तरह से मुकाबला था 16 का मुकाबला था उसमें 5-0 से जीत दर्ज की, यानी 5-0 से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया। पिछले साल विश्व मुक्केबाजी कप में रजत पदक जीतने वाले अंकुश अब पदक पक्का करने के एक कदम दूर है, यानी वो क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेहरूज सालिमो से भिड़ेंगे।
2: जी शुक्रिया शाहिद, और आगे बढ़ेंगे वुशु की बात करते हैं दोस्तों। द बिग न्यूज दैट वी हैड ऑल बीन वेटिंग फॉर इज दैट रोशिबिना देवी हैज सिक्योर्ड हर प्लेस इन द वुमेन 60 किलोग्राम फाइनल आफ्टर बीटिंग इंडोनेशिया स्थानिया 2-0 इन द सेमीफाइनल। ये मुकाबला आज घटित हुआ और अब इसके बाद कल हम सब रोशिबिना देवी को देख सकते हैं फाइनल्स के मुकाबले में, एंड होपिंग That she gets us the coveted gold. Well, ये तो समय ही बताएगा कल कि भारत के नाम कल वुशु में सिल्वर आ रहा है या गोल्ड, लेकिन रोशिबिना देवी को हर भारतीय की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अ बिग गेम टुमारो।
1: रोइंग की बात करते हैं साक्षी, रोइंग से भारत के लिए बेहद अच्छी खबर आ रही है। एशियन गेम्स में भारतीय रोअर्स ने 4 स्पर्धाओं में फाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के सिंगल स्कल्स में बलराज पवार ने 6:52.84 के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं पुरुषों के डबल स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी 6:15.63 के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही और फाइनल ए में जगह बना ली, यानी पहुंच चुकी है। लाइटवेट डबल स्कल्स में रोहित और उज्जवल कुमार सिंह ने चौथा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में जगह हासिल कर ली है। वहीं पर क्वाड्रपल स्कल्स में अरविंद सिंह, कुलेंदर सिंह, नवदीप सिंह और जकार खान की टीम ने भी फाइनल में जगह बना ली है। अब भारतीय रोवर्स की नजरें पदक पर हैं। डबल स्कल्स की जो मुकाबला है यानी फाइनल मैच जो है 24 सितंबर यानी कल खेला जाएगा।
2: राइट, और अब बैडमिंटन की बात कर लेते हैं। उम्मीद तो वैसे हमारे शटलर्स से आज बहुत ज्यादा लगाई गई थी क्योंकि मेंस टीम सेमीफाइनल्स आज घटित हुए हैं, लेकिन इट वाज आई वुड सी अ मिक्स्ड फिनिश बाय आवर शटलर्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी फिनिश्ड विद द ब्रॉन्ज मेडल। यस, इंडिया लॉस्ट 1-3 टू चाइना इन द मेंस टीम सेमीफाइनल एंड द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 एंड हैड टू सेटल इन फॉर द ब्रॉन्ज मेडल। ऑल्सो दिस इज इंडियाज ये जो ब्रॉन्ज मेडल है ये भारत का सेकेंड एवर एशियन गेम्स मेडल है मेंस टीम बैडमिंटन के अंदर। लेट्स मूव ऑन टू ऑल्सो गिविंग यू स्लाइट डिटेल्स ऑन हाउ द ऑल द मैचेस वेंट। सबसे पहला मैच हुआ था शी यू कुई के और लक्ष्य सेन के बीच में, जिसमें शी यू कुई डिफीटेड लक्ष्य सेन इन स्ट्रेट गेम्स विनिंग 21-16, 21-18। बाद में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने नेक्स्ट मैच के अंदर एक कमबैक जरूर करवाया भारत को अगेंस्ट चाइनाज लियांग विकिंग एंड वैंग चैंग बाय डिफीटिंग देम इन स्ट्रेट गेम्स 2-0, बट दैट वॉज नेवर गोइंग टू बी इनफ बिकॉज ली शेफेंग देन

0: लेटर बीट आयुष शेट्टी 21-19, 21-13 और इसके साथ ही चाइना ने 2-1 से अपनी बढ़त भी बना ली इन द मेंस सेम सेमीफाइनल एंड द फोर्थ मैच जो हुआ था अर्जुन और हरिहरन के बीच में उसमें वंस अगेन दे वेंट डाउन 21-16, 17-21, 21-9 दे जस्ट वर नो फाइट टू देयर चाइनीज अपोनेंट्स एंड एज अ रिजल्ट चाइना डिफीटेड इंडिया 3-1 इन द मेंस टीम सेमीफाइनल्स।
1: जी चीन की बात की तो चीन के बारे में बता दें मेडल टेबल पर चीन अभी भी सबसे ऊपर बना हुआ 48 गोल्ड 20 सिल्वर 10 ब्रॉन्ज समेत कुल 78 पदक जीतकर सबसे ऊपर बना है जबकि जापान जो मेजबान है इस एशियन गेम्स का 15 गोल्ड 25 सिल्वर 37 ब्रॉन्ज समेत 67 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर वहीं दक्षिण कोरिया की बात कर लेते हैं 8 गोल्ड 8 सिल्वर 25 ब्रॉन्ज समेत 41 पदक जीतकर तीसरे पायदान पर है।
0: जी और अब एक नजर भारत के ऊपर भी डाल लेते हैं कि वेयर एग्जैक्टली इज इंडिया स्टैंडिंग इन द मेडल टेबल। भारत की पोजीशन इस समय है 13th। कुल मिलाकर भारत के पास हैं 12 मेडल्स जिसमें से एक गोल्ड आया है क्रिकेट की दुनिया से द वुमेन्स क्रिकेट गेटिंग अस दैट गोल्ड यस्टरडे। 5 सिल्वर मेडल्स हैं जिसमें 4 शूटिंग से आए हैं 1 वेट लिफ्टिंग से। 6 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं जिसमें से 3 शूटिंग में आए हैं 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट में आया है 1 सॉफ्ट टेनिस में आया है और 1 बैडमिंटन में। हियर इज होपिंग दैट इंडिया गोज ऑन टू एड मेडल्स स्पेशली द कोवेटेड गोल्ड टू देयर किटी मोर एंड मोर इन द कमिंग डेज। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास इस अपडेट में शाम 6:30 आप सबके लिए बस इतना ही था। आपसे एक बार दोबारा जुड़ेंगे दोस्तों शाम को 7:30 विद ऑल द रैप अप ऑफ द एंटायर डे अपडेट एंड आल्सो गिविंग योर प्रीव्यू ऑफ द इवेंट्स लाइंड अप टुमारो। फॉर द मोमेंट इट्स मी साक्षी मांडवाल एंड शाहिद आजमी सेइंग गुड बाय।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के दी रियल रेडियो 107 FM रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी आज फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर आपका म्यूजिकल एनर्जी बूस्ट प्रोग्राम छायालोक। और छायालोक में भी आज बुधवार की शाम

0: आपके लिए आपका स्पेशल सेगमेंट हम साथ साथ। तो जुड़े रहिए, बने रहिए 107 एफएम रेनबो के साथ, जहां हम और आप जुड़ते हैं हार्ट टू हार्ट। और जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि किसी ना किसी जोड़ी पर कार्यक्रम आप सुनते हैं हम साथ साथ में, तो मैं बताऊंगी। एंड बाय द वे बता दूं कि पहला गाना सुन के आपको कुछ कुछ क्लू तो मिल ही जाएगा।
1: हम साथ साथ।

हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, आपने जो कहा वो बात मुझ तक पहुँच गई है, क्योंकि हमारा और आपका कनेक्शन होता है हार्ट टू हार्ट। आप सभी यही बोल रहे हैं ना कि जतिन ललित की जोड़ी पर आज आप कार्यक्रम सुनेंगे, तो आप बिल्कुल सही हैं। और ऐसा है कि आप घर बैठे बैठे कार्यक्रम सुने और सोचे कुछ और वो मुझ तक बात ना पहुँचे, भला ऐसा कैसे हो सकता है? हम और आप जुड़ते हैं ना दिल से दिल तक। और आपको बता दूँ कि जतिन ललित भाई, ये जो दोनों भाइयों हैं जतिन पंडित और ललित पंडित की एक प्रसिद्ध भारतीय संगीत जोड़ी जो है, निर्देशक जोड़ी है, 1990 से 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में बॉलीवुड संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें याद किया जाता है। ये जोड़ी अपनी मधुर रचनाओं के लिए जानी जाती है और कई हिट फिल्मों से जो है ये जुड़ी हुई है जोड़ी। और उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध कृतियों की बात करूं तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, हाँ जी कुछ कुछ होता है, ऐसे ही ये टाइटल ट्रैक आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, गीतकार थे समीर और संगीतकार जतिन ललित। और जब बात कर रही हूं उनकी प्रसिद्ध कृतियों के बारे में तो बता दूं कि मोहब्बतें फिल्म याद हो गई आपको, कभी खुशी कभी गम और प्यार तो होना ही था शामिल है, और भी कई सारी फिल्में हैं। 91 से 2006 की बात करूं तो मतलब स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे जतिन ललित, उनका व्यावसायिक नाम जो है, और ये उनके संगीत एल्बमों सीडी और डीवीडी के कवर पर दिखाई देता है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करूं तो जतिन और ललित हरियाणा राज्य के हिसार जिले के पाली मंदोरी गांव के एक संगीत परिवार से आते हैं। पंडित जसराज उनके चाचा थे, उन्होंने अपनी संगीत की शिक्षा मुख्यतः अपने पिता पंडित प्रताप नारायण से प्राप्त की। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा ने गिटार और पियानो सिखाया। हिंदी फिल्म अभिनेत्रियां जो है सुलक्षणा पंडित और विजेता पंडित उनकी बहनें हैं, और दिवंगत संगीत निर्देशक आदेश श्रीवास्तव उनके बहनोई थे, जिनकी शादी जो है उनकी एक छोटी बहन विजेता से हुई थी, विजेता पंडित से। संगीत कैरियर की बात करूं तो जतिन ललित की जोड़ी का निर्माण संयोग से हुआ था। 80 के दशक की शुरुआत में जतिन ने मंधीर बड़े भाई के साथ मिलकर जतिन मंधीर के रूप में टीम बनाई। इस जोड़ी के नाम कभी कोई बड़ी हिट नहीं रही, हालांकि उन्होंने किंग वदंतियों किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी जो है किशोर कुमार के साथ 1990 में वफा फिल्म और मोहम्मद रफ़ी के साथ जो है 1982 में साथ काम किया है, लेकिन बात बनी नहीं। सबसे छोटे भाई ललित को संगीत के प्रति अपने प्रेम का पता चल रहा था, क्योंकि जतिन मंदिर की जोड़ी सर्किट में वास्तव में चल नहीं रही थी और ललित भी अपनी पहचान बनाने के लिए उत्सुक थे, इसीलिए संगीत संयोजन पर फिर से विचार करने का निर्णय लिया गया और इस तरह जतिन ललित जोड़ी का गठन हुआ। एक जोड़ी के रूप में उनका पहला प्रयास एक निजी एल्बम रिदमिक लव था। इस एल्बम में काफी गाने थे। उन्होंने 1991 में हिंदी फिल्म यारा दिलदारा के लिए संगीत तैयार करके अपने करियर की शुरुआत की, तो वाई नॉट देर न करते हुए सुने यारा दिलदारा से उस गीत को, बिन तेरे सनम, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार जतिन ललित।

सुना आपने यारा दिलदारा से। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार जतिन ललित, आवाजें उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की। हालांकि ये फिल्म यारा दिलदारा एक रोमांटिक फिल्म थी, लेकिन इसका संगीत सबसे बड़ा हिट रहा। फिल्म का सदाबहार मशहूर गाना बिन तेरे सनम था, जो चार्ट में शीर्ष यानी कि टॉप पर रहा। उन्हें पहली बार फिल्म खिलाड़ी के साउंड ट्रैक पर उनके नाम और जो जीता वही सिकंदर के एक रोमांटिक गाने पहला नशा के लिए देखा गया। इस फिल्म में उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया। 1992 में उनकी अन्य फिल्म का स्कोर जो है राजू बन गया जेंटलमैन भी बहुत सफल रहा। उनकी रचनाएं आर डी बर्मन की संगीत निर्माण शैली से काफी प्रभावित थी। कल्ट क्लासिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए जतिन ललित का संगीत बेहद सफल रहा और इसे सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड साउंड ट्रैक में से एक के रूप में याद किया जाता है, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों में दूसरा नामांकन मिला। ये अब तक का पांचवा सबसे ज्यादा बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक है। इसके बाद खामोशी द म्यूजिकल 1996 में और यस बॉस 1997 में, इन दोनों फिल्मों के लिए उन्हें उनके सफल संगीत ने उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों में तीसरा और चौथा नामांकन दिलाया, जिससे बॉलीवुड के शीर्ष संगीत निर्देशकों के रूप में उनकी जगह पक्की हो गई। जतिन ललित को अगली बड़ी सफलता करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है से मिली, जिसकी 85 लाख प्रतियां बिकी और उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए पांचवा नामांकन मिला। उसी वर्ष प्यार तो होना ही था और 1999 में सरफरोश को भी सराहना मिली, जिससे उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार में छठा और सातवां नामांकन मिला। और फिलहाल आप सभी के लिए जो जीता वही सिकंदर से अगला ट्रैक उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी एंड म्यूजिक नान अदर देन जतिन ललित। और इसी के साथ अब क्या कहूं, जब भी ये गाना मैं प्ले करती हूं ना, तो कहीं ना कहीं मुझे वो बात याद आती है जब 19 मार्च 2013 में मैंने FM रेनबो पे अपना पहला प्रोग्राम किया था, तो इसी गाने के साथ आगाज किया था।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट के साथ। आज की ये अंतिम अपडेट है, बात करेंगे आज जो दिन भर में उठा पटक हुई, कहीं अच्छा हुआ, कहीं लगा कि कुछ अच्छा और होना चाहिए था, कहीं उम्मीद बनी, कहीं उम्मीद टूटी, इसी पे बात करेंगे। आज क्या कुछ भारत के हाथ लगा, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलोग्राम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का जहां मान बढ़ाया, वहीं शूटिंग में भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, वहीं महिला स्की टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। सॉफ्ट टेनिस में पुरुष सिंगल्स में जय मीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा, ये सॉफ्ट टेनिस में भारत का पहला एशियन गेम्स पदक है। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने टीम स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस तरह वेटलिफ्टिंग, शूटिंग, सॉफ्ट टेनिस, बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों और टीमों ने भारत की पदक की संख्या जो है उसमें इजाफा किया। वहीं कल भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, कई बड़े इवेंट होने वाले, कई पदक दांव पे लगे हैं। जी हाँ, एशियन गेम्स में 24 सितंबर को भारत की नजरें कई अहम मुकाबलों और पदक स्पर्धाओं पर रहेंगी। रोइंग में बलराज पवार सिंगल स्कल्स फाइनल में उतरेंगे, सतनाम सिंह और सलमान खान डबल स्कल्स फाइनल में चुनौती देंगे, महिला फोर लाइट वेट डबल स्कल और क्वाड्रपल स्कल्स में भी भारतीय नाविक पदक की दौड़ में बने रहेंगे। उशु में रोशिबिना देवी महिला 60 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में चीन की झांग शाओ के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगी। शूटिंग में आकाश भारद्वाज, कमलजीत, केदारलिंग, बालकृष्ण 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत की चुनौती पेश करेंगे। वहीं स्कीट मिस टीम में परिनाथ धालीवाल और आनंदजीत सिंह नरुका भी उतरेंगे, यानी पदक के लिए उनकी जोड़ी भी मध्य मुकाबिल होगी। कैनो स्प्रिंट में पुरुष कयाक पोर और कैनो डबल 500 मीटर के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पदक के लिए उतरेंगे। टीम स्पर्धा में पुरुष कबड्डी का मुकाबला चीनी ताइपे से और महिला कबड्डी टीम का मुकाबला जापान से होगा। वहीं पुरुष हॉकी टीम कल दक्षिण कोरिया से जोर आजमाइश करेगी, या यूं कहें कि वहां जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। मुक्केबाजी की बात करें तो पुरुष 70 किलोग्राम में प्री क्वार्टर फाइनल में सुमित का मुकाबला अली कासिम हमदान अल सर्रे से होगा। वहीं मुक्केबाजी की महिला वर्ग में 51 किलोग्राम के राउंड ऑफ 16 में साक्षी रिंग में उतरेंगी, उनका सामना कजाकिस्तान की अलुआ बालिकबेवा से होगा। भारत की परवीन हुड्डा 65 किलोग्राम में उज्बेकिस्तान की मलिका नोजिमोवा से भिड़ेंगी। एथलेटिक्स की बात करें तो एथलेटिक्स में आशा इलंगो और निहारिका वशिष्ठ ट्रिपल जंप फाइनल में उतरेंगी। 100 मीटर में अनिमेश कुजूर और गुरिंदर सिंह भारतीय चुनौती पेश करेंगे, जबकि महिला 10,000 मीटर फाइनल में सीमा पर भी सभी की निगाहें बनी होंगी। कुल मिलाकर 24 सितंबर भारत के लिए कई खेलों में पदक की उम्मीदों से भरा होगा, कई खेलों में भारत की पदक पर निगाहें होंगी। खासकर अगर बात करें तो एथलेटिक्स में जो कल से मुकाबले शुरू हो रहे हैं, भारत के कई वहां पर जो खिलाड़ी उतरेंगे, साथ ही साथ कबड्डी, शूटिंग या हॉकी, कई जगहों पे पदक होंगे, यानी सभी की निगाहें इन खेलों पे लगी होगी। देखना होगा भारत कहां तक पहुंचता है, यानी भारत की जो चुनौती है वो कहां तक आती है, किन किन खिलाड़ियों को पदक मिलता है। लेकिन हाँ, आज का जो दिन था शूटिंग में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत खास नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत की जो बड़ी खिलाड़ी हैं, बड़े जो नाम हैं, चाहे हम बात करें मनु भाकर की बात करें, सुरुचि सिंह की बात करें या ईशा सिंह की बात करें, वो सभी यहाँ पर नाकाम फिलहाल नजर आए। हालांकि 25 मीटर में अभी भी मनु भाकर को पदक जीतने की उम्मीद है। अगर पदक तालिका पर देखें तो सबसे ऊपर चीन 48 गोल्ड, 20 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज सहित 78 पदक जीतकर है, जबकि जापान 15 गोल्ड, 25 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज समेत 67 पदक के साथ दूसरे

0: स्थान पर, जबकि तीसरे स्थान पर कोरिया है, यानी दक्षिण कोरिया, 8 गोल्ड 8 सिल्वर 25 ब्रॉन्ज समेत 41 पदक के साथ तीसरे स्थान पर। जबकि भारत की बात करें, भारत पदक तालिका पर तीसरे स्थान 13वें स्थान पर है, 1 गोल्ड 5 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज समेत कुल भारत के खाते में 12 पदक हैं। कल यकीनन भारत की जो पदक की संख्या उसमें इजाफा होगा, और उम्मीद है कि जो तालिका पदक की है उसमें भी भारत की जो तालिका में जो स्थान है उसमें भी उछाल होगा, जो 13वें से उम्मीद है कि और ऊपर भारत जाएगा। फिलहाल आज की इस अंतिम अपडेट के साथ मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ इजाज़त दीजिए, नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: अभी आपने सुना एशियन गेम्स 2026 का पीरियोडिक अपडेट, और अब रुक करते हैं हम अपने कार्यक्रम की ओर, यानी कि छाया लोक हम साथ साथ।
3: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
2: हम साथ साथ, बिल्कुल हम साथ साथ कार्यक्रम का नाम भी है, मतलब जो सेगमेंट है आज बुधवार के दिन हम साथ साथ, और यू भी हम 24/7 ऑल डे ऑल नाइट रहते हैं म्यूजिकली योर्स, और रहते हैं साथ साथ, दिल से दिल तक का हमारा कनेक्शन है, जुड़ाव है। और ऐसा है दोस्तों कि हम बात कर रहे हैं उस म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी पर जिनका नाम है जतिन ललित। उन्होंने अराउंड 72 फिल्मों में जो है कुल 775 के करीब गाने बनाए हैं। इस जोड़ी ने विभिन्न गीतकारों के साथ काम किया है, मजरू सुल्तानपुरी, गोपाल दास, नीरज, आनंद बख्शी, समीर, जावेद अख्तर, और गायकों में अमित कुमार, कुमार शानू, अभिजीत भट्टाचार्य, उदित नारायण, हरिहरन, सोनू निगम, KS चित्रा, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, शान बाबुल सुप्रियो और कई अन्य शामिल है। दिग्गज गायिका लता मंगेशकर, आशा भोसले और जगजीत सिंह ने भी इस जोड़ी के लिए कुछ फिल्मों में गाना गाया है। अभिजीत अपने करियर की सफलता का श्रेय जतिन ललित को देते हैं, जिनके गाने ये तेरी आंखें झुकी झुकी, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, चांद तारे और तौबा तुम्हारे ये इशारे हैं, और क्या मतलब, अब अगला गाना सुनते हैं ना, तौबा तुम्हारे ये इशारे। अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में इस गीत को सुनते हैं चलते चलते, चलते चलते मतलब हम और आप चलते चलते नहीं सुनेंगे, फिल्म का नाम है चलते चलते, और यूं भी अगर कोई रास्ते में है और चलते चलते सुन रहा है तो मतलब एज यू लाइक आप सुन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।

ऐसा है दोस्तों कि जतिन ललित के शुरुआती जो संगीतकारों में जो वो शामिल थे और वो उन शुरुआती संगीतकारों में से रहे जिन्होंने पार्श्व गायकों के बजाय बॉलीवुड फिल्मी सितारों द्वारा गाए गए गीत लिखे। उन्होंने फिल्म गुलाम में जो है मुख्य अभिनेता आमिर खान के लिए विशेष रूप से आतिक्य खंडाला गीत की रचना की थी। बाद में उन्होंने फिल्म खूबसूरत में संजय दत्त के लिए भी एक गीत लिखा। जतिन ललित ने 4 मौकों पर वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक तैयार किया। 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 1998 में कुछ कुछ होता है, 2000 में फिल्म मोहब्बतें और 2001 में कभी खुशी कभी गम। और अभिनय करियर की बात करूं तो जतिन और ललित 1992 के हिट फिल्म जो जीता वही सिकंदर में हमसे है सारा जहां गाने के दौरान दिखाई दिए। जतिन गाना गा रहे हैं जबकि ललित बास गिटार जो है वो पहले शॉट में उन्हें दिखाया गया कि वो बजा रहे हैं। जतिन ने फिल्म में रूठ के हमसे गाना गाया था और जतिन ललित की जोड़ी की संगीत की खास बात ये थी कि 90 से लेके 2000 के दशक में बॉलीवुड संगीत में मधुर और भावपूर्ण धुनें लेकर आए जो आज भी लोगों को बहुत पसंद आती है। उनकी रचनाएं विशेष रूप से युवा पीढ़ी को आकर्षित करती है। जतिन ललित की संगीत की कुछ जो खास बातें हैं

जैसा कि मैंने कहा कि हाँ, इनकी जोड़ी में जो है बहुत ही मतलब एक आकर्षण होता था इनके म्यूजिकल जोड़ी में और इनके म्यूजिक में, मतलब क्या कहें कि जो युवा है आज भी ज्यादातर लोग जो हैं वो जतिन ललित के गानों को बेहद पसंद करते हैं और मधुर और भावपूर्ण धुनें जो ये तैयार करते हैं ना, उनके संगीत की सबसे बड़ी खासियत उनकी मधुर और भावपूर्ण धुनें थी जो लोगों के दिलों को छू जाती है, ठीक वैसे ही जैसे 107 एफएम रेनबो आपके दिलों तक पहुंचता है और दिलों को छूता है। युवाओं को पसंद आने वाला संगीत है ये उनकी, और उनकी रचनाएं विशेष रूप से युवा पीढ़ी को आकर्षित करती है और उनके गाने अक्सर युवा प्रेम, दोस्ती और कॉलेज के जीवन

पर आधारित होते हैं सदाबहार हिट, यानी कि उन्होंने कई सदाबहार हिट गाने दिए जो आज भी लोकप्रिय हैं, जैसे कि तुझे याद ना मेरी आए, कुछ कुछ होता है, ये दिल्ली है मेरे यार, और बहुत सारे चांद सिफारिश, फिल्म फना का गाना, विभिन्न शैलियों का मिश्रण भी है। उन्होंने विभिन्न शैलियों के संगीत को मिलाकर एक नया और ताज़ा साउंड ट्रैक बनाया और जिसमें रोमांटिक, भावनात्मक और ऊर्जावान गाने शामिल हैं। कलाकारों के साथ तालमेल, उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया और उनके साथ उनके गाने भी काफ़ी लोकप्रिय हुए। जतिन ललित की जोड़ी ने बॉलीवुड संगीत को एक नया आयाम दिया और उनकी संगीत की शैली आज भी लोगों को बहुत पसंद आती है। तो क्यों ना अगला गाना आप तक पहुंचाऊं, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से, क्योंकि एक कल्ट क्लासिक फिल्म है, और इसे इस फिल्म से गाना ना सुनाऊं वो भी जतिन ललित पे प्रोग्राम हो तब, तो ये तो बात जो है सही नहीं होगी।

0: शुरू की घड़ी में समय उछ रहा है 7:55 और 14 सेकंड, यानी कि हमारे और आपके बीच से समय जो बचा है वो है मात्र 5 मिनट आप कह सकते हो। और ऐसा है कि चलते चलते यही कहूंगी कि कार्यक्रम सुनते रहिएगा, क्योंकि 8:02 से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहेंगी आरजे पूनम। और फिलहाल मैं यही कहूंगी कि किसी भी फनकार के लिए, कलाकार के लिए, संगीतकार के लिए जो है अवार्ड्स डेफिनेटली मायने रखते हैं, लेकिन जो सबसे सर्वोपरि अवार्ड होता है वो है उनके फैंस के दिलों में उनके लिए बेपनाह प्यार। और इन दोनों जतिन ललित भाइयों ने जो है संगीत की दुनिया में, बॉलीवुड की दुनिया में अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी है कि ये दोनों संगीत की दुनिया में अमर हो गए। और ऐसा है कि अब चलते चलते आप सभी के लिए फिल्म सरफरोश से आमिर खान और अलका याग्निक की आवाज में उस गीत को प्ले करना चाहूंगी जिसे कलमबद्ध किया है बड़े खूबसूरती से समीर ने और संगीत से सवारा है जतिन ललित ने। इस गीत को सुनते सुनते यही कहूंगी कि आगे दीजिए अपनी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत को, और साथ में तो ये कहना बनता है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और आज 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, तो आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाइए ताकि आज तो आपका हेल्दी हो ही, लेकिन आने वाले कल में आप और भी ज्यादा हेल्दी रहें। इसी के साथ कहूंगी टडा बाय बाय।
1: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

8:08 आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक पूनम के संग ओनली ऑन 107 दिल से दिल तक। हमारा और आपका ये साथ बना रहेगा अगले 9 बजे तक, तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: आठ बजकर 19 मिनट और एक बार फिर से मौसम का मिजाज कुछ बदला बदला सा है। तो अब जब मौसम है तो मिजाज तो बदलता ही रहेगा ना। ऐसे में हम लोगों में से ज्यादातर लोगों को एक ही काम करने का मन करता है और वो काम है बालकनी में बैठकर रिम झिम बारिश देखना, हाथ में गर्मा गर्म चाय की प्याली और उसके साथ गर्मा गर्म पकौड़े। तो बस जीवन में और क्या चाहिए फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि चाहिए तो बहुत कुछ। तो बस इसी बात पर एक गर्म चाय की प्याली

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: 8:31 और बहुतों को चाय उतनी पसंद नहीं होती, कॉफ़ी पसंद आती है। तो बस कॉफ़ी लवर्स के लिए ये ज़मीन फिल्म से ये ट्रैक मैंने प्ले किया था। वैसे हमारी फिल्मों ने बारिश को प्यार का दूसरा नाम दिया है। प्यार हुआ, इकरार हुआ से लेकर तुम ही हो तक बारिश के गानों ने हमारे दिलों में रोमांस की एक अलग ही परिभाषा लिख दी है। खैर, उस परिभाषा तक मैं नहीं जाना चाह रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर हो जाएगा। फिलहाल जब रोमांस की बात हुई है ना, तो एक रोमांटिक सा खूबसूरत सा नगमा आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। ओनली ऑन 107, दिल से दिल तक।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

8:43। बारिश में बहुतों को मैंने देखा है कि उन्हें फुटबॉल खेलना बहुत पसंद होता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्हें रिमझिम फुहारों के बीच हल्की स्पीड में गाड़ी चलाना, बैकग्राउंड में धीमा रोमांटिक संगीत, जैसे कि आप कह सकते हैं जगजीत सिंह की गजलें या फिर अरिजीत सिंह के गाने, और साथ में आपके पसंदीदा दोस्त मित्र, तो बस और जीवन में चाहिए क्या, है ना। तो ऐसी बातों के बाद एक खूबसूरत सा नगमा तो बनता है ना। तो सुनते रहिए, साथ रहिए, और अगले 9 बजे तक हमारे साथ यूं ही बने रहिए। ओनली ऑन 107, आगे आप सब जानते हैं।

8:54 और ये बरसात का मौसम होता ही ऐसा है कि भागे रे मन कहाँ जानू ना। जी हाँ, सब कुछ भुला देता है कुछ समय के लिए, अपने दुख दर्द उदासी सब कुछ भुलाकर एक नए माहौल को तैयार करता है ये बारिश का मौसम। तो किसी के लिए ये प्यार का मौसम है, तो किसी के लिए सुकून का, हाँ किसी के लिए दर्द का मौसम भी हो सकता है। वैसे निर्भर करता है कि कौन इसे किस नजरिए से देखता है। फिलहाल तो मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ घड़ी पर है जो लगातार इशारे कर रही है कि बस अब टटा बबाय कह देना चाहिए। तो बस जाते जाते खूबसूरत सा नगमा आप सबके लिए रखे जा रही हूं और साथ ही साथ आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल मत रहिए। इस आशा के साथ पूनम लेती है विदाई, टाटा बाय।

0: नहीं
1: हम हैं तेरे साथ।
0: बिल्कुल।
1: अरे पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये तेरी बात,
0: क्योंकि

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: Intensity, integrity, and intelligence. These are the three I's which the Indian contingent needs at the Asian Games, and they have been displaying these attributes with their tremendous performances. Hello and welcome to the Asian Games Aichi Nagoya 2026 report on Akashvani. My name is Abhinav Punchi, and I'll be taking you through all the action from the Asian Games today. And here are the headlines. It was another exciting day as our nation won 5 medals. Mirabai Chanu starring with the silver, ending her Asiad medal drought. While 4 bronzes came from Jayameena in soft tennis, the men's badminton team, the women's skeet shooting team and the men's skeet shooting team. There was disappointment though as the star-studded 10-meter women's air pistol contingent ended medalless. However, Wushu athlete Roshabina Devi meanwhile is on the cusp of history as she looks to convert her 2023 Asiad silver to gold tomorrow after winning her semi-final today. In Kabaddi, there were wins for both the men's and women's teams. While the Indian women's hockey team continued their goal-scoring spree by thrashing Thailand. The best moment for India came from the weightlifting arena. So let's hear what Vijeta Chaturvedi had to say.
2: भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। मीराबाई चानू ने कुल 198 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उनका कुल स्कोर 198 किलोग्राम रहा। गोल्ड मेडल नॉर्थ कोरिया की री सॉन्ग गुम ने जीता। उन्होंने कुल 215 किलोग्राम वजन उठाया, स्नैच में 94 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 121 किलोग्राम। लेकिन भारत के नजरिए से मीराबाई का ये सिल्वर मेडल बेहद महत्वपूर्ण है। ये उनका एशियन गेम्स में पहला मेडल है। इससे पहले हंगजाऊ एशियन गेम्स 2023 में मीराबाई चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने पोडियम पर जगह बनाकर एशियन गेम्स में अपने मेडल के सूखे को खत्म कर दिया। मीराबाई के सिल्वर मेडल ने भारतीय वेटलिफ्टिंग के 28 साल के इंतजार को भी खत्म कर दिया। भारत ने आखिरी बार 1998 में बैंकॉक एशियन गेम्स में कर्णम मल्लेश्वरी के जरिए वेटलिफ्टिंग में मेडल जीता था। मीराबाई चानू के साथ भारत की वेटलिफ्टिंग टीम में भारत की भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव का महिलाओं के 53 किलोग्राम स्नैच राउंड में पहले प्रयास में 84 किलो और दूसरे प्रयास में 87 किलोग्राम का वजन उठाया था, लेकिन तीसरे और आखिरी प्रयास में वो विफल रही। वो 90 किलो का वजन नहीं उठा सकी, यानी कि स्नैच राउंड में 87 किलो उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। क्लीन एंड जर्क में 108 किलोग्राम का वजन उठाया। उन्होंने कुल 195 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाकर अपने अभियान को 8वें स्थान पर समाप्त कर दिया।
1: We also had great news from Wushu, and Sakshi Manwal has a report.
3: Roshabina Devi secured her place in the women's 60kg final after beating Indonesia's Thania 2-0 in the semi-final. The Indian Wushu star will now compete for the gold medal in tomorrow's final on 23rd September. With this victory, India now stands assured of a medal from the world of Wushu in the ongoing Asian Games 2026.
1: There was history made for India in soft tennis, and here's a report of how the action unfolded. Jayameena won the bronze medal in men's singles at the 2026 Asian Games in Aichi Nagoya, becoming the first Indian to win an Asian Games medal in soft tennis. Meena's historic run ended in the semi-finals, where he lost to Japan's Takuya Kurosaka 3-5, 1-4, 1-4, 4-1, 6-4, 1-4. The Indian had earlier beaten the Philippines' Sherwin Nagut in a thrilling 7-game quarterfinal to assure India of its first medal in the sport at the Asian Games. The bronze adds to Meena's steady rise on the international soft tennis circuit. Let's now hear from the Indian athlete who created history in Japan. He's speaking exclusively on Akashvani.
4: बिल्कुल भरोसा था, और सबसे बड़ी चीज कि हम स्टार्टिंग में क्वार्टर फाइनल्स भी हारे, हम मिक्स डबल्स में भी प्री क्वार्टर फाइनल्स हारे, तो उसके बाद यहाँ पर मेडल निकालना ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि जब मेंस इवेंट में हम जीता जीता मैच हारे थे तो रात रात नींद नहीं आ रही थी और मेंटली बहुत प्रेशराइज भी हो रहे थे, और उसके बाद मिक्स डबल्स इवेंट्स में भी हम जीता हुआ मैच हार गए तो और डिसअपॉइंट हुआ मैं खुद से बहुत। मैं ही जान पा रहा हूँ कि वो कितना मुश्किल था मेरी टीम के लिए, मेरे कोच के लिए, मेरे घर वालों, स्पेशली इंडिया के लिए, इंडिया के सॉफ्ट टेनिस के जो बच्चे थे, जो करोड़ों भारतीय की उम्मीद है उस पर खड़ा उतरना सर ये मेरे लिए ओलंपिक मेडल से बराबर है। आकाशवाणी से जब मेरा इंटरव्यू हुआ था इट वॉज अ मोटिवेशन, मौका दिया था मेरे सपने और मेरी इच्छा जाहिर करने का दुनिया के सामने। तो सुदेश सर

0: हमारा सपना था सर, आज हम यहाँ पर खड़े हैं, तो वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आकाशवाणी का टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: Time now to head to the shooting range where Shahid Azmi has a report from a mixed day for the Indian contingent.
2: Shooting range से भारत के लिए डबल ब्रॉन्ज की खबर सामने आई है। स्कीट टीम इवेंट में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और पुरुष दोनों टीमी स्पर्धाओं में कांस्य पदक अपने नाम किए। सबसे पहले बात महिला स्कीट टीम की, राजा ढिल्लों, परिणाश धालीवाल और महेश्वरी चौहान की तिकड़ी ने शानदार निशानेबाजी करते हुए 331 अंक हासिल किया और भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया। और इसके बाद पुरुष स्कीट टीम ने भी कमाल कर दिया। ओलंपियन अनंतजीत सिंह नारुका, महराज अहमद खान और भौतेक सिंह ने कुल मिलाकर 346 अंक हासिल किए और भारत को एक और कांस्य पदक दिलाया। वहीं महिला स्कीट के व्यक्तिगत फाइनल में राजा ढिल्लों भी चौथे स्थान पर रही, जबकि शूटिंग के एक बड़े मुकाबले में मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 181.1 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रही। यानी शूटिंग रेंज पर भारत ने आज दो कांस्य पदक जरूर जीते, लेकिन राजा ढिल्लों, अनंतजीत सिंह नरुका और मनु भाकर के व्यक्तिगत मुकाबलों में पदक से चूकने का मलाल भी रहा। निराशा ईशा सिंह और सुरुचि सिंह के प्रदर्शन से भी हुई। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल इवेंट के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। आपको बता दें, ईशा सिंह ने 572 और सुरुचि ने 568 अंक हासिल किए। भारत को शूटिंग से अब तक कुल 7 मेडल मिले हैं, जिनमें 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। हालांकि गोल्ड से अभी भी दामन खाली है। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने 7 गोल्ड सहित कुल 22 पदक जीते थे।
1: The Indian women's team was in action in hockey, and well, it was another one-sided encounter. India continued its unrelenting form in the women's hockey competition at the ongoing Asian Games after blanking Thailand 21 in a Pool B fixture. This win joins the list of India's thumping 19-0 and 17-1 victories over Uzbekistan and Indonesia respectively. Forward Deepika starred with 9 goals, while Navneet Kaur scored 4. Rutuja Pistol bagged a hat-trick. India won bronze in Hangzhou 2023 and is in hunt for their first Asian Games gold since 1982. Time now to check out what happened in the boxing arena. शाहिद आजमी।
2: भारत के अंकुश पंघाल आज मुक्केबाजी स्पर्धा में सर्वसम्मति से हुए फैसले में जीत के साथ पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहली बार एशियाई खेलों में उतरे 21 वर्षीय राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पंघाल ने बहरीन के हमसा ओगेल को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 5-0 से हराया। पिछले साल विश्व मुक्केबाजी कप में रजत पदक जीतने वाले अंकुश अब पदक पक्का करने से एक कदम दूर हैं। वो क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेहरूज सालिमेव खेलेंगे।
1: Time now for all the action from the Indian contingent. From table tennis, Sakshi Manwal has a report.
3: Harmeet Desai and Yashaswini Ghorpade booked their place in the mixed doubles quarterfinals with a 3-1 victory over Hong Kong's Yu Kuan Tho and Wing Lam. The Indian pair won 11-6, 11-5, 10-12, 11-7 to advance to the last 8. Manusha and Dia Chitale stormed into the mixed doubles quarterfinals with a dominant straight games victory over the Maldives' Ahmed Musa and Nazim Eshat. The Indian pair won 11-0, 11-7, 11-6 in just 15 minutes, wrapping up a commanding performance to book their place in the last 8. Harmeet and Yashaswini will face Lin Shidong and Kuai Man of China, while Dia and Manish will face Wang Chun and Du Hui of Chinese Taipei.
1: The Indian contingent has been giving their best in fencing. Vijeta Chaturvedi has more.
4: फेंसिंग मतलब तलवारबाजी का खेल। इंडिविजुअल सेबर में गीशो निधि कुमार सेन पद्मा ने राउंड ऑफ 32 में शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस के क्विंटन सेसाना को 15-8 से हराया और प्री क्वार्टर यानी कि राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला कजाकिस्तान के आर्टियोम से हुआ। यहां भारतीय फेंसर ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन मुकाबला 11-15 से हार गए। इस परिणाम के साथ कुमार सेन पद्मा का इंडिविजुअल सेबर अभियान समाप्त हो गया। वहीं बात करें महिलाओं के व्यक्तिगत फॉइल स्पर्धा की, तो मीना देवी नौरेम और आशिता स्टेलिन राज जॉयस राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गई।
1: द इंडियन मेन बैडमिंटन टीम वर ट्राइंग टू क्रिएट हिस्ट्री टुडे Let's hear what Sakshi Manwal has in her report.
3: India lost 1-3 to China in the men's team semi-final at the Asian Games and settled for the bronze medal. Shi Yukui defeated Lakshya Sen in straight games, winning 21-16, 21-18 in the opening match of the men's badminton team semi-final.

0: Final. Later, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty made a strong start against China's Liang Weiqing and Wang Chang, defeating them in straight games 2-0, 21-11, 22-20. They helped India level the score with China at 1-1. However, Li Shifeng beat Ayush Shetty 21-19, 21-13 in straight games to put China 2-1 ahead of India. Arjun and Hariharan went down 21-16, 17-21, 21-9 in the fourth match of the semi-final tie. The Indian pair showed some resistance in the second game, but the Chinese duo quickly stopped the fight back. India's bronze is only its second ever Asian Games medal in the men's team badminton event.
1: India war in action in the Kabaddi competition. Vijeta Chaturvedi has more.
2: Bharatiya Mahila team ka mukabla Iran se hua aur Bharatiya team ne ye match 37-23 ke antar se apne naam kar liya. Mukable ke pehle half mein Bharat 19-15 se aage tha. Dusre half mein Bharatiya khiladiyon ne defending aur raiding dono mein behtar talmel dikhaya aur badhat ko lagatar mazboot kiya. Is jeet ke saath Bharatiya Mahila team ne group stage mein lagatar dusri jeet darj ki. Ab baat karte hain भारतीय पुरुष कबड्डी टीम की. पुरुष टीम का सामना बांग्लादेश से हुआ और भारत ने यहां भी बड़ी जीत दर्ज की. भारत ने बांग्लादेश को 48-25 से हराया. पहले हाफ में ही भारत ने 29-9 की मजबूत बढ़त बना ली थी. इस जीत के साथ भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप स्टेज में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की. बांग्लादेश पर जीत के बाद भारत ने ग्रुप ए से सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है. अब भारतीय पुरुष टीम का ग्रुप स्टेज में आखिरी मुकाबला 24 सितंबर को चीनी ताइपे के खिलाफ होगा. वहीं महिला टीम भी 24 सितंबर को जापान से भिड़ेगी. इसके बाद 25 सितंबर को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे. एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मेडल तो पक्का हो गया है.
1: India were trying to make an impact in swimming after a disappointing day yesterday. Sakshi Mandwal has a report.
0: Sajan Prakash missed the swimming men's 100-meter butterfly heats. Meanwhile, his compatriot Benedictine Beniston had finished fourth in the heats with a timing of 53.08 seconds. Anish Sunil and Vedant Madhavan finished fourth and sixth respectively in their men's 200-meter freestyle heats. Anish clocked 1 minute 22.65 seconds ahead of Madhavan's 1 minute 23.67 seconds.
1: There were a lot of hopes from the Indian equestrian contingent. Vijeta Chaturvedi has more.
2: भारतीय घुड़सवारों ने इवेंटिंग के क्रॉस कंट्री चरण में हिस्सा लिया. भारत की ओर से फवाद मिर्जा, अर्जुन सिंह नागरा और आशीष लिमई मैदान में उतरे. इसमें ड्रेसेज, क्रॉस कंट्री और शो जंपिंग जैसे चरण शामिल होते हैं. यानी सिर्फ घोड़े की रफ्तार ही नहीं बल्कि नियंत्रण, सटीकता और बाधाओं को पार करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है. हालांकि भारतीय दल का प्रदर्शन आशा अनुरूप नहीं रहा, इसलिए भारत का क्रॉस कंट्री इवेंट में अभियान आज समाप्त हो गया.
1: A lot of the Indian contingent were in action in the squash competition. Well, Sakshi Mandwal will tell us how they fared.
0: Indian squash players Abhay Singh, Veer Chotrani and Tanvi Khanna all advanced to the round of 16 in their respective singles events on the opening day of squash at the 20th Asian Games, Echi Nagoya 2026. Tanvi Khanna made quick work of South Korea's Kim Dami, cruising to a 3-0 victory in just 16 minutes. The Indian won 11-5, 11-7, 11-5 to book a place in the round of 16. Abhay Singh defeated Thailand's Arkaradit 11-1, 11-0, 11-2, cruising to a 3-0 easy victory for himself. Veer Chotrani defeated Sri Lanka's Shamil Vakil 11-8, 11-3, 11-3, then also securing a place for himself in the round of 16 men's singles in squash.
1: There was a lot at stake for the Indian contingent in rowing. Shahid Azmi tells us how it unfolded.
3: Rowing से भारत के लिए अच्छी खबर है. एशियन गेम्स में भारतीय रोवर्स ने चार स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बना ली है. पुरुषों के सिंगल स्कल्स में बलराज पवार ने 6 मिनट 52.84 सेकंड के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान हासिल किया. वहीं पुरुषों के डबल स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी 6 मिनट 15.63 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही और फाइनल ए में पहुंची. लाइटवेट डबल स्कल्स में रोहित और उज्जवल कुमार सिंह ने चौथा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई. क्वाड्रपल स्कल्स में अरविंद सिंह, कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह और जकार खान की टीम ने फाइनल में जगह बनाई. अब भारतीय रोवर्स की नजरें पदक पर हैं. डबल स्कल्स का फाइनल कल सुबह खेला जाएगा.
1: For India to stay in canoe competition, they had to do well today. Sakshi Manwal tells us how the Indian contingent fared.
0: India's men's kayak 4-500 meter team finished third in the heats and qualified for the final A. Arun Singh, Harshvardhan Singh, Shaktawat, Varinder Singh, Nucha Singh Oinam combined for a timing of 1 minute 29.447 seconds in the heats. Megha Pradeep finished fifth in the women's

0: Meter heats, Chempadale, Satya Prakash, Prasanna Kumar and Prohit Baroy finished on the fifth spot with the timing of 1 minute 41.141 seconds and qualified for the semi-finals. In women's canoe double 500 meter heats, Megha Pradeep and Neha Devi finished on the fifth spot with a timing of 2 minutes 8.713 seconds and qualified for the semi-finals.
1: The Indian contingent is really trying their best to make an impact in Sepak Takraw. Let's hear what Vijeta Chaturvedi has for us in her report.
2: फुर्ती संतुलन और किक के खेल सेपक टैक्रो में आज भारतीय अभियान में भारत के पुरुष टीम रेगु का मुकाबला फिलीपींस से हुआ। भारत के लिए ये मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण था। भारत ने खेल का आगाज शानदार अंदाज में किया। पहले मुकाबले में भारत ने फिलीपींस को 2-0 से शिकस्त दी। उसके बाद दूसरे मैच में भी भारत ने कड़ा मुकाबला करते हुए स्कोर 2-1 कर दिया। लेकिन तीसरे और निर्णायक रेगु में भारत को झटका लगा। फिलीपींस ने वापसी करते हुए तीसरा रेगु 2-0 से जीत लिया। इस तरह भारत ने मुकाबला तो 2-1 से जीत लिया, लेकिन अपने पहले मुकाबलों में भारत जापान और मलेशिया से हार के चलते सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाया। भारत का टीम रेगु अभियान यहीं समाप्त हो गया, लेकिन सेपक टैक्रो के अन्य इवेंट्स में अभी संभावनाएं बाकी हैं।
1: Well, you heard all the special reports. So, where is India in the medal standing? Well, Vijeta Chaturvedi will just tell us.
2: भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीत लिए हैं। क्रिकेट में 1 स्वर्ण पदक, शूटिंग में 4 रजत पदक और 3 कांस्य पदक, वेटलिफ्टिंग में 1 रजत, बैडमिंटन में 1 कांस्य, मिक्स्ड मार्शल आर्ट में 1 ब्रॉन्ज और सॉफ्ट टेनिस में 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। इस तरह आज के मुकाबले खत्म होते होते भारत ने पदक तालिका में 13वां स्थान प्राप्त किया।
1: So 24th September Thursday, what does that have in store for us from Japan? Well, Rosha Bina Devi is going to go for gold in Wushu. She's going to be in action against Zhang Zhao in the women's 60kg Wushu Sando competition. And don't count out our rowing contingent. They are all in action. There's men's single sculls finals, men's double sculls finals. We have women's four finals as well in rowing, as well as lightweight men's double sculls finals and men's quadruple sculls finals. All gold medal events. Our shooting team will be hoping to put the women's contingent 10-meter air pistol disappointment behind them. The men, can they do the needful tomorrow in their individual and team competition? As well as skeet mixed team competition is also happening and hopefully they get us a medal. We also have athletics action where Asha Lango and Niharika Vashishth are in the women's triple jump final and Seema is in action in the women's 10,000 meters. And finally, the Indian contingent is also in action in the kayak where there are a lot of gold medals at stake. Also in artistic gymnastics, Pranati Nayak is in action in the women's world final. And not only this, but the Indian men's team is in action in Kabaddi. The Indian men's team has a blockbuster hockey match against South Korea. We have our boxers also in action. So it's going to be an action-packed day at the Asian Games. So make sure you stay tuned for all the updates coming to you every hour on the hour from 9:30 a.m. on Akashwani. So from producer Shahnawaz Khan, editor Vandana Bhadwaj and me Abhinav Punchi, we bid you farewell and hoping for another great day for the Indian contingent at the Asian Games.
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
4: गाने बाजुक ओने रेडियो सुनछो 107 एफएम रेनबो सात सुरे शारदी बुधवार राते सुनछो ब्लॉकबस्टर बुधवार Blockbuster Budbar 107 FM Rainbow Day Blockbuster Budbar
5: ১৩৮তম ডাক আদালত ও পেনশন আদালত। মুখ্য পোস্টমাস্টার জেনারেল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সভাপতিত্বে ১৩৮তম ডাক আদালত ও পেনশন আদালত আগামী 28/10/2026 তারিখে মুখ্য পোস্টমাস্টার জেনারেলের অফিস পশ্চিমবঙ্গ সার্কেল যোগাযোগ ভবন P36 সিআর অ্যাভিনিউ কলকাতা 7,12 তে বেলা 12:30টায় গুগল মিটে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই আদালতে পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সমূহের ডাক পরিষেবা এবং ডাকঘরের পেনশন উপভোক্তার পেনশন সংক্রান্ত সমস্যার বা অভিযোগের সুরাহা করা হবে। যারা এখানে সুরাহার জন্য আবেদন করবে